अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

जलिम समर्पयामि नमस्करोमि। अर्जनम भविजानाम अर्जनम शुभसंपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम श्री सीताराम नाम महाराज की जय। संत बड़े परमार्थे वेतरे अवधूत राम नाम की गर्जना भाग्य यमदूत श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री राम लला भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग श्रोताओं, आज सोमवार है 20 जुलाई 2026, पंचांग 1948 के आषाढ़ महीने की 29वीं तिथि। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण लेकर हम उपस्थित हैं। उद्घोषक इकबाल कादिर का हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करें। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 18वां दिन है। हम सभी यात्रियों की सुरक्षित यात्रा की मनोकामना करते हैं और आज के इस प्रसारण का आरंभ करते हैं।

जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH तथा OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर। वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा जारी है। यात्रा 16 दिनों तक शांतिपूर्ण तथा सुगम ढंग से चल रही थी। इस बीच लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी की गुफा में जाकर उनके दर्शन प्राप्त किए, किंतु 17वें दिन यानी कल 19 जुलाई को यात्रा मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण अस्थायी रूप से स्थगित करनी पड़ी। साथ ही श्रद्धालुओं को ये आश्वासन भी दिलाया गया कि जैसे ही मौसम में परिवर्तन आएगा यात्रा फिर से जारी की जाएगी। इसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि यात्रीगणों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए और उन्हें सुरक्षित महसूस कराया जाए ताकि उनको किसी कारण कोई कठिनाई कोई कष्ट ना देखना पड़े। प्रशासन के द्वारा कई कदम उठाए गए उनकी सुरक्षा को लेके, और इस बीच कई श्रद्धालुओं में थोड़ा सा आक्रोश भी दिखा क्योंकि सब लोग दिल में एक जोश एक जज्बा एक वलवला लेकर देश के विभिन्न भागों से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं, और दूसरी तरफ उन्हें इस बात का भी एहसास था कि प्रशासन जो कुछ भी कर रहा है उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए कर रहा है। जो भी यात्री कल मुख्तलिफ आधार शिविरों में उपस्थित थे उन्हें उन्हीं आधार शिविरों में रहने की सलाह दी गई, और जो मुख्तलिफ बेस कैंप्स में बालतल का बेस कैंप जो है या पहलगाम नुनवन का बेस कैंप जो है वहाँ पर जो श्रद्धालु थे उन्हें भी वहीं पर रहने की जो है सलाह दी गई। एकमात्र उद्देश्य ये कि हमारे जो मेहमान हमारे जो यात्रीगण बड़ी आस्था और बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं उन्हें किसी कारणवश भी कोई कष्ट ना देखना पड़े, और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि आप तक ताज़ा तरीन जानकारियाँ पहुँचाते रहें ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स, और

0: जो भी हमसे बन पड़ता है हम आप तक वो उचित जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमारे इस प्रसारण का एक हिस्सा बने, अपनी कोई बात, अपनी कोई शिकायत, अपना कोई सुझाव हम तक या प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे स्टूडियोज़ का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप हमें SMS या WhatsApp के ज़रिए अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर नोट करें, 9596-990-954। आप ईमेल के ज़रिए भी हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी नोट करें, akashvanibaltal@gmail.com। इसके साथ ही प्रशासन ने भी जम्मू और श्रीनगर जो दो डिवीज़न हैं उनके लिए भी दो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स रखे हुए हैं, जिन पर भी आप प्रशासन से कोई सवाल पूछ सकते हैं, कोई मदद ले सकते हैं। श्रीनगर के लिए जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है वो इस तरह से है, 1800-180-7199। तथा जम्मू के लिए इसी प्रकार का एक हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, 1800-180-7198। जी हाँ, इन टेलीफोन नंबर्स और ईमेल्स पर आप अपनी कोई भी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम वो बात प्रशासन तक पहुंचाएं और आपकी उस समस्या, आपकी उस बात का जल्द से जल्द आपको जवाब मिले, आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। फिलहाल हमारा ये विशेष प्रसारण जारी है। हम पहले घंटे में यही कोशिश करते हैं कि घाटी के जो विभिन्न भागों में हमारे संवाददाता हैं उनसे बात करने की कोशिश करें और ताज़ा तरीन जो जानकारी, जो अपडेट्स यात्रा के हवाले से उनके पास होते हैं वो आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है, हमारा प्रयास रहता है। फिलहाल ये विशेष प्रसारण जारी है, आप इसका हिस्सा बने रहिए। हम जल्द ही लौटेंगे और अपने किसी संवाददाता से बात करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्या अपडेट है उनके पास और क्या कुछ आगे प्रशासन करना चाहती है।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
1: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।
2: वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप FM बालतल, FM पहलगाम, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल, DTH तथा OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन रहे हैं। हमारे जम्मू के संवाददाता जावेद मेहराब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इनसे ये पूछेंगे, सबसे पहले आपका खैर मकदम जावेद।
3: बहुत शुक्रिया।
2: सबसे पहले बताइए, क्या कुछ रहा कल के दिन का पूरा लेखा जोखा, जम्मू में मौसम कैसा रहा और आज किस तरीके की अपेक्षाएं, क्या उम्मीदें हैं?
3: जी, पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है उसको लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद कल से जम्मू में जो तीर्थ यात्रा को रोक दिया गया था और कल दिन भर मौसम, हालांकि जो बादल है वो छाए रहे, मौसम जम्मू शहर में, शहर की बात करें तो बारिशें कम हुई कल, लेकिन आज की भविष्यवाणी में बारिशें तेज होने का जो आसार है वो बहुत ज्यादा है
2: जी।
3: उसी को लेकर ही ये जो यात्रा है कल ही बंद कर दी गई थी, रोक दी गई थी फिलहाल। उसमें खुद डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने इस बात को सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि तीर्थ यात्रा को बेहतर और आसानी के साथ जारी रखने के लिए मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है उस पर अमल करने की जरूरत है। उसी के लिए जैसे ही मौसम विभाग की भविष्यवाणी सामने आई, तीर्थ यात्रा को रोक दिया गया और ये कई उपराज्यपाल

जो है वो कई बार अपनी जो विजिट्स हैं जो उन्होंने डिफरेंट टाइम पे यहाँ अलग अलग ट्रांजिट कैंप्स में की, उन्होंने खास तौर पर दिशा निर्देश दिए थे कि जैसे ही मौसम विभाग की तरफ से भविष्यवाणी आएगी या किसी भी किस्म, क्योंकि ये जो सफर है ये न सिर्फ घाटी में पहाड़ी श्रृंखलाओं का है बल्कि यहाँ से भी जब जम्मू से घाटी की तरफ तीर्थ यात्रा शुरू होती है यहाँ भी कई जगहों पर भूस्खलन होने का जो सिलसिला हो जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग पर और कई जगहों पर तो हालात फिर बन जाते हैं, उसी के मद्देनजर ये कदम उठाया गया था। और ये कदम अभी फिलहाल बिल्कुल इस ऑर्डर को दिशा निर्देश को बिल्कुल रखा गया है ताकि जो तीर्थ यात्री है उनकी जो ये यात्रा है उसमें किसी तरह की भी कोई ऐसी अनहोनी ना हो जिसको लेकर फिर एक अलग एक शुरू हो जाए ये बात कि तीर्थ यात्रा को लेकर सतर्कता को बहुत ज्यादा बनाया गया है। यहाँ SDRF की टीमें जो है उनको लगातार ट्रांजिट कैंप्स के आसपास रखा गया है, पूरे शहर में जो है ये हो रहे हैं ऐलानात हो रहे हैं ताकि किसी भी तरह के खतरे से लड़ा जा सके। और जो पहाड़ी इलाके हैं जम्मू संभाग के जिसमें रियासी है, कटरा है, माता वैष्णो देवी की बहुत बड़ी यात्रा पूरे साल यहाँ रहती है, उसको भी फिलहाल रोक दिया गया है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों का सफर है इसीलिए ये कदम उठाया गया था। तो तीर्थ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है लेकिन दिन भर यहाँ कल बादल छाए रहे, बारिशें कुछ एक इलाकों में हल्की सी हुई लेकिन आज जो है सूरतहाल आज मौसम विभाग के मुताबिक तेज बारिश शदीद बारिश होने की के आसार बताए जा रहे हैं। इस दौरान जो तीर्थ यात्री यहाँ मुख्तलिफ ट्रांजिट कैंप्स में है, विभिन्न ट्रांजिट कैंप्स में है, उन्हें उनके लिए तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं और जो फैसिलिटीज रखी गई हैं उन्हें बिल्कुल उसी तरह से रखा गया है, वहाँ खाने पीने की, रहने की और पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही जो है तीर्थ यात्रियों को बाहर आने जाने दिया जाता है क्योंकि मौसम एक तो जो ट्रांजिट कैंप्स है ये तवी के किनारे पर बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल तवी के किनारे पर है, एक बहुत बड़ा तवी रिवर फ्रंट इसके लिए लिया गया था, एक तो वहां पर बहुत बड़ा ट्रांजिट कैंप है, दूसरा भगवती नगर का भी जो निवास स्थान है ये भी तवी के किनारे पर है। और तवी में इस वक्त जो पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हुई है उसका उफान बना हुआ है इसलिए SDRF की टीमें बिल्कुल अलर्ट पर है, यहाँ सुरक्षा कर्मी पुलिस और दूसरी जो एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं बल्कि श्रद्धालुओं के लिए खास तौर पर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जम्मू में वो अपने अपने ट्रांजिट कैंप्स में ही रहे और यहाँ सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल ये ट्रांजिट कैंप्स में आराम करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर तहसीलदार जम्मू जो है उसकी निगरानी में ये तमाम ट्रांजिट कैंप्स में सख्त जो निर्देश दिए गए हैं कि जो भी श्रद्धालु है उन्हें शहर में घूमने जरूर दिया जाए लेकिन पड़ताल के बाद और फिर उसके पानी का स्तर मौसम को देखते हुए सभी तरह की जो चीजें हैं उनको देखकर ही ये हुक्म दिया गया। और ये सभी तहसीलदार जम्मू जो है और दूसरे जो उच्च अधिकारी हैं वो हालात पर नजर रखे हुए हैं और तवी में पानी का स्तर जो है वो अभी बढ़ा हुआ है लिहाजा तवी नदी के नजदीक तीर्थ यात्रियों को जाने की सख्त मनाही है। तमाम ट्रांजिट कैंप्स में पुलिस CRPF और तीर्थ यात्रियों को फिलहाल बाहर जाने की इजाजत है। मौसम के इस बदले रुख के मद्देनजर तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं और खासतौर पर SDRF जो है उनकी टीमें शहर में चक्कर मार रही हैं और ऐलान कर रही हैं कि किसी भी तरह से तरीके नजदीक ना जाया जाए। वहीं देशभर से जो बाबा अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु हैं वो जम्मू में उनका ये कहना है कि केवल पड़ाव का ही नहीं है बल्कि यहाँ ये जो शहर है ये आस्था संस्कृति और पर्यटन का भी संगम है ये उनका कहना है। यहाँ तीर्थ यात्री जम्मू के बाजारों में भी घूमते क्योंकि शहर की तरफ जो है जो जो बाढ़ की स्थिति होती है वो शहर की तरफ कम होती है इसलिए

0: शहर की तरफ आते जाते तीर्थयात्रियों को देखा जा सकता है, वहां घूमते भी देखा जा सकता है, खरीदारी करते भी यहाँ के रेस्टोरेंट्स में जो खाना खाते और शाम को जो है यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं ट्रांजिट कैंप्स में, तो उसका भी मजा लेते देखा जा सकता है। और फिलहाल जो है ट्रांजिट कैंप्स के अंदर ही सभी तरह की सुविधाएं रखी गई हैं, और खास तौर पर ये श्रद्धालुओं को कहा गया है कि वो सुकून के साथ, आराम के साथ, सब्र के साथ अपने दूसरे अलार्म का इंतजार करें, और ताकि जो जब जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा ऐलान होगा कुछ के बाद ही एक नई व्यवस्था के साथ उन्हें घाटी की तरफ जाने की इजाजत होगी। लेकिन फिलहाल 23 तक जो है 23 जुलाई तक फिलहाल मौसम जो है वो बहुत सख्त बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से, और फिलहाल जो ये तीर्थयात्री है यहाँ के स्थानीय मंदिरों में श्री रघुनाथ जी रघुनाथ मंदिर, बीरखो मंदिर और उसके अलावा जो अन्य धार्मिक स्थल है वहां पर देखा जा सकता है। और श्रद्धालुओं का भी ये कह रहा है कि जम्मू शहर का जो धार्मिक वातावरण है उन्हें बेहद पसंद भी है, और सावन का महीना भी नजदीक है और यहाँ के इन मंदिरों में पूजा अर्चनाएं भी हो रही है, उनमें भी हिस्सा ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि तीर्थ यात्रा के साथ साथ श्रद्धालुओं का ख्याल प्रशासन भरपूर रख रही है ताकि किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना हो, किसी तरह से तीर्थयात्री किसी तभी के नजदीक या बारिश के अंदर किसी ऐसे इलाके में ना पहुंच जाए जहां फिर निकालना मुश्किल हो, उसी को देखते हुए ये सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। और फिलहाल बिल्कुल ठीक तरह से है श्रद्धालु यहाँ पर अपने अपने ट्रांजिट
1: कैंप। जी जावेद, जैसे कि आपने बताया कि पहाड़ी इलाकों में कल बारिशें हुई, बहुत तेज़ बारिशें हुई, और जो रवि का तवी रिवर का जो पानी है वो भी ऊपर आया है बहुत ज़्यादा, तो ऊपरी इलाकों में क्या किसी घटना किसी खराब घटना की कोई आपके पास इतला है? और हमें ये बताइए कि क्या जो नए यात्रियों का आने का सिलसिला है जम्मू में, क्या वो जारी है या फिलहाल उन्हें भी रोक दिया गया है आने से?
0: नहीं देखिए, यहाँ पर दो माध्यम, एक तो आपने कहा कि जो पहाड़ी क्षेत्रों की मैं बात करूं तो जो पीर पंचाल की तरफ इलाके हैं राजौरी पुंछ, वहां तो बहुत त्रासदी आई है, कहीं कहीं जगह पर बादल फटे हैं और कहीं जगह पर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, जानी मानी नुकसान हुआ है, जानी भी नुकसान हुआ, अभी तक लगभग बताया गया है कि इस पुंछ जम्मू राजौरी के इलाके में लगभग 10 से 12 लोगों की मौत वाका हुई है, और उसके अलावा स्थानीय जो लोगों को बहुत सख्त नुकसान भी हुआ है क्योंकि पानी के रेलों ने घरों को उड़ा दिया है। और उसके अलावा जो यहाँ सबसे ज्यादा जो मुख्य रूप से जो खबरों में सबसे ज्यादा है वो है राजौरी का जो नया बस स्टैंड है वहां पर लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है, सरकारी संपत्ति का, उसके अलावा गाड़ियों का, उसके अलावा और बहुत पूरे शहर, पूरे राजौरी पुंछ शहर में इस वक्त समझ लें आपकी एक पूरा अलर्ट जारी कर दिया गया है। और उसके अलावा वहां पर जो बचाव और कार्य का जो काम शुरू कर दिया गया है वो युद्ध स्तर पर जारी है, और जो लोगों के लिए वहाँ त्रासदी आई है तो उसकी वजह से लोग सख्त परेशान भी है, और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ इस वक्त काम करने में जुट गई है। उपराज्यपाल ने भी कल एक बैठक की, उसके अलावा जो वजीर आला है उमर अब्दुल्ला उन्होंने भी कल एक बैठक के बाद जम्मू के सिविल सेक्रेटरी में बैठक के बाद युद्ध स्तर पर उन चीजों को ठीक करने की बात की, और वहां पर खास तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। इसीलिए इस तरफ जो है यहाँ जो ये सारा पहाड़ी क्षेत्रों का पानी है, रियासी, कटरा, गुल गुलाबगढ़, रामबन, ये आके फिर समझ लें आपकी तवी रिवर जो है, तवी नदी जो है उसका
1: उसी में मिल जाता
0: है उसकी वजह से, तो यहाँ जो तवी नदी के किनारों पर जो इलाके हैं उनमें रेड अलर्ट जारी हो जाता है। यहाँ भी कई इलाके हैं, गुजर नगर है, उसके अलावा अन्य और जो इलाके हैं उनमें खास तौर पर SDRF की, क्योंकि कई बार ये पिछले वर्षों में भी देखा गया है कि वहां पर

0: जो हालात हो जाते हैं वो बहुत सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी जबरदस्त इस वक्त बड़ी परेशानी बनी हुई है पानी के जल स्तर के बढ़ने से। और आज के बाद जो है जो अलर्ट है वो रेड अलर्ट है और शदीद बारिश होने का अंदेशा है। लगभग 8 से 9 लगभग अभी से शुरू हुई हो रही है हल्की बारिश और ये तेज होने और शदीद होने की भविष्यवाणी है। इसलिए जो है हालात बहुत सख्ती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एक तरफ तीर्थ यात्रा है, एक तरफ स्थानीय लोग है और वो इसी को लेकर ना के पुलिस की सख्ती और पुलिस के दिशा निर्देश और उसके अलावा जो सीआरपीएफ है कई कई जगहों पर कई जो बाढ़ स्थित इलाके हैं वहां पर तारे भी लगाई गई हैं ताकि इसी भी तरह से कोई स्थानीय या श्रद्धालु तवी नदी की तरफ ना जाए, क्योंकि तवी नदी का भी जल स्तर जब बढ़ जाए तो समझ ले आपकी ये समंदर की तरफ बढ़ जाता है और लगातार जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो बहुत हालात अलग तरह के हो जाते हैं। इसीलिए खासतौर पर श्रद्धालुओं को भी ट्रांजिट कैंप्स के अंदर ही रहने का और खासतौर पर जो शहर के अंदर जो ट्रांजिट कैंप्स है मोस्टली तीर्थयात्रियों को उस तरफ ले जाया गया है। और जो सभाएं हैं अग्रवाल सभा महाजन सभा और अलग अलग जो स्थानीय सभाएं हैं यहाँ उनके अंदर भी तीर्थयात्रियों को जगह दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई नुकसान ना हो। उसके अलावा आपने पूछा कि क्या शहर में क्या माहौल है, तो शहर में जो है वो इस वक्त बारिश की वजह से समझ लें आपके लोग भी डरे हुए हैं क्योंकि बारिश जो है वो सख्त होने की अंदेशा बताया जा रहा है। इसी को लेकर सभी तरह की सतर्कता रखी गई है और उसी सिलसिले में ये जो तीर्थ यात्रा है उसको खास तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर लगी हुई थी, अलग से प्रशासनिक अधिकारी जो है वो इसका ख्याल रखे हुए हैं और तीर्थ यात्री भी दिशा निर्देश पर अमल कर रहे हैं। और जो तीर्थ यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं वो दो माध्यम से पहुंचे हैं, एक रेल के माध्यम से एक सड़क के माध्यम से। सड़क के माध्यम से जो लोग लखनपुर द्वार को क्रॉस कर रहे हैं उनके लिए कुथवा विजयपुर और सांबा में अलग अलग ट्रांजिट कैंप्स बनाए गए हैं, उन्हें फिलहाल वही रोक दिया गया है। और जो रेल के माध्यम से आ रहे हैं रेलवे स्टेशन के नजदीक एक बहुत बड़ा ट्रांजिट कैंप बनाया गया है। उसके अलावा और भी जो सरकारी बिल्डिंगे हैं उन्हें भी सरकार ने अपनी तरफ लेकर श्रद्धालुओं को वहां बिठाया गया है ताकि किसी भी तरह के रिस्क से पहले ही श्रद्धालुओं को आसानी रखा जाए, बारिश से बचाया जाए और तेज बारिश जो इस तरफ होने वाली है तवी रिवर फ्रंट की तरफ उस तरफ उन्हें ना अभी फिलहाल इजाजत जाने की नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है कि तीर्थयात्री जरूर यहाँ आ रहे हैं लेकिन अभी उन्हें शहर के अंदर या जो दूसरे ट्रांजिट कैंप्स है, क्योंकि जैसे ही वो रेल के माध्यम से रेलवे स्टेशन पहुंचते थे या लखनपुर के माध्यम से यहाँ शहर की तरफ उन्हें ले जाया जाता था, लेकिन अभी फिलहाल उन्हें वहीं पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ट्रांजिट कैंप्स में ही रखा गया है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और श्रद्धालुओं के लिए भी ये एक अच्छी बात यह है कि उन्हें सारी व्यवस्थाएं एक ही जगह मिल रही है, भोजन की, खाने पीने की, चिकित्सा की और सारी चीजों की जब व्यवस्था मिल जाए तो इस टफ टाइम में सख्त वक्त पे उन्हें भी दिशा निर्देश पर अमल करने का साहस तो दिखाना पड़ेगा और वो भी उस पर अमल कर रहे हैं क्योंकि जो दिशा निर्देश है वो सख्त है। पुलिस और सीआरपीएफ इस पूरी यात्रा को देख रही है और उनकी तरफ से हर जगह बैरिकेडिंग भी की गई है, किसी भी तीर्थयात्री को बगैर किसी पड़ताल के बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अगर तक उस तरह की सारे कदम उठाए गए हैं और खासतौर पर एसडीआरएफ की टीमें शहर में चारों तरफ घूम रही है और मेगाफोन्स पर ये ऐलान करते भी नजर आ रहे हैं कि तवी के नजदीक ना जाया जाए, बारिश के इस मौसम में ट्रांजिट कैंप्स के अंदर ही रहे, अलग अलग तरह के निशान दे दिए गए हैं तो उस पर अमल भी हो रहा है। इसलिए हालात जो है वो पूरी तरह से
1: जी हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो मौसम के हालात हैं वो जल्दी से ठीक हों और जो यात्रियों से हमारा भी यही निवेदन है कि वो फिलहाल सब्र से काम लें और जो

प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश उन्हें दिए जाते हैं वो उन पर अमल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि ये सब उन्हीं की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इस तफसीली जानकारी के लिए। ये थे हमारे जम्मू के संवाददाता जावेद मेहराब, जिन्होंने हमें डिटेल में बताया कि जम्मू में इस वक्त क्या हो रहा है, प्रशासन क्या कर रही है और मौसम विभाग ने किस तरह के अलर्ट्स जारी किए हैं। कल हमने जैसा कि उन्होंने कल के ट्रांसमिशन में बताया था कि जम्मू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और आज रेड अलर्ट जम्मू पूरे जम्मू डिवीज़न के लिए किया गया है। और जो यात्रियों को निवेदन किया गया है, यात्रियों को मुनादी के ज़रिए स्पीकर्स के ज़रिए ये कहा जाता है कि आप सब्र से काम लें, एहतियात से काम लें और अपने अपने ट्रांज़िट कैंप्स में या जहां कहीं भी वो हैं वो वहीं पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी सुरक्षा का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखें।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं और ये प्रसारण जारी है। इसमें हमारे घाटी के विभिन्न भागों में जो हमारे संवाददाता हैं, हमारी उनसे बात होती है सुबह के पहले घंटे में। और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे रामबन के संवाददाता मोहम्मद तस्कीन। तस्कीन साहब, आपका खैर मकदम है इस विशेष प्रसारण में। मौसम के हवाले से कल और आज के लिए यात्रा स्थगित है, और क्या कुछ रहा कल मौसम का हाल और आज के दिन के हवाले से आपके पास जो मौसम में तब्दीलियां आने वाली हैं और जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनकी क्या रिपोर्ट्स हैं और क्या ताज़ा तरीन जानकारी है आपके पास?
1: जी, जैसे कि मालूम है सबको कि 19 तारीख से यात्रा को मुअत्तल रखा गया है मौसमी खराबी की सूरत हाल के पेश नजर जो फोरकास्ट किया गया है बारिशों का, तो उसी का आज दूसरा दिन है। आज भी ट्रैफिक, जो यात्रा ट्रैफिक है वो बंद है शाहरा पर। अलबत्ता पूरे रामबन बानहाल सेक्टर में बारिशें हो रही है जो सुबह 6 बजे से करीबन शुरू हुई है और अभी भी बारिशें हो रही है, लेकिन इसकी शिद्दत जो पहले 1 घंटे में बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है और जो रूटीन का ट्रैफिक है वो हाईवे पर अभी चल रहा है। जो यात्री परसों के रोके गए हैं, करीबन रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो करीबन 1000 से ज्यादा यात्रियों को रामबन के यात्रा निवास में रोका गया है चंद्रकूट के मुकाम पर, और उनके लिए जो इंतजाम वगैरह वहां पर बराबर रखे गए हैं। तो इस दौरान किसी भी गाड़ी को ये जो यात्रा के रिलेटेड हो उन्हें जम्मू, उधमपुर और रामबन से कश्मीर की तरफ बढ़ने की इजाजत नहीं है और उस पर आज दूसरे रोज भी सख्ती से अमल किया जा रहा है। फिलहाल बारिशें हो रही है, मौसम बहुत खुशगवार हो गया है, लेकिन जो ट्रैफिक है वो चल रहा है और यात्रा ट्रैफिक पर फिलहाल जो बंदिश का जो ऐलान किया गया है कि इस पर रिस्ट्रिक्ट रहेगा, फिलहाल मुअत्तल रहेगी यात्रा। तो उम्मीद है कि आइंदा 2 और दिन तक 3 दिन तक, क्योंकि बारिशों का जो पेशन गोई की गई है वो करीबन 23 तक,
0: जी बिल्कुल,
1: जुलाई तक की गई है। तो इसी को रखते हुए, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है जो इस वक्त जो स्लोगन है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो भी इससे यात्रा को कर रहे इंतजाम है जो इसको मैनेज कर रही है, तो उनका ये पहला है कि सेफ्टी रखी जाए, सेफ्टी को ही मद्देनजर रखकर ये सब किया जा रहा है। तो उसी की वजह से जो गाड़ियां रामबन और इसके अलावा जम्मू के भगवती नगर में भी बहुत सारे जो यात्री हैं जो कश्मीर की यात्रा पर आए हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, वो फिलहाल रोक दिए गए हैं और उन्हें अगले हुक्म तक रुकने के लिए कहा गया है। बाकी जो इंतजाम है वो अलग किस्म के हैं, उनमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है और उनके लिए जो सरकार की तरफ से या जो लंगर वाले हैं, लंगर जो मैनेजमेंट्स हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जम्मू में भी उसके बाद बानहाल रामबन एरिया में, तो उनकी तरफ से जो सेवा है वो बराबर जारी है और सेवा की जा रही है जो भी यात्री यहाँ पर रोके गए हैं।
0: जी, सड़क में कल अगर बारिशें हुई, क्या किसी जगह किसी पस्सी के गिराने या किसी भूस्खलन की आपके पास कोई इतला है या ट्रैफिक किसी वजह से कल मुतासिर हुआ हो?
1: देखिए, कल जो 19 तारीख की बात करें, जो उधमपुर और नाशरी के दरमियान में हाईवे पर कई जगहों पर पत्थर गिराए, पसिया गिराए और उसकी वजह से, और जबकि जो तवी का जो रिवर है यहाँ चिनारी साइड से यानी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो उसने भी जो पिछले साल यानी अगस्त पिछले साल जो अप्रैल के महीने में शाहरा को बहुत ज्यादा हाईवे को नुकसान पहुंचा था, उधमपुर के सेक्टर्स में चिनानी और ये जो उधमपुर के दरमियान है जखेनी के दरमियान, तो कल एक बार फिर वहां पर जो रिक्लेम किया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सड़क के एक हिस्से को दोबारा ट्रैफिक के लिए हाल ही में खोला गया था उसे, और कल जो बारिशें हुए तो जो तवी में पानी की सतह जो है वो बहुत बढ़ गई, उस वजह से एक बार फिर जो है सड़क का एक हिस्सा जो है मुकम्मल तौर से डैमेज हुआ है, तबाह हुआ है। तो वहां पर एक ही लेन से अभी ट्रैफिक को चलाया जा रहा है, यानी एक ही ट्यूब से सड़क जो ऊपरी सड़क है उससे चलाया जा रहा है, क्योंकि फोर वे हमारा शाहरा। तो इसी तरह यहाँ नाशरी में कहेंगे टनल के बाहर बिल्कुल वहां पर भी चौक में बहुत बड़ा स्लाइड एक ऊपर से चल रहा है जिससे एक जो हाईवे का एक जो सड़क है उसे मुकम्मल तौर से बंद किया है। तो ये सिलसिला जारी रहता है इन इलाकों में जब भी तेज बारिशें होती हैं, लेकिन रामबन बानहाल का सिलसिला कहेंगे अभी तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन उधमपुर में कल सड़क को बहुत

0: नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में UCC विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
1: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
0: UCC विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन 3 देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टानें खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
3: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार

0: सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
1: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली PV सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, PV सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, PV सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ता ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति

0: government seeks cooperation of all political parties for smooth functioning of parliament. President Draupadi Murmu to hold delegation level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandu in Chisinau today. Madhya Pradesh cabinet approves uniform civil code bill, tribal communities to be kept outside its purview. Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, 8 people still missing. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। हुकूमत ने सभी सियासी पार्टियों से कहा है कि वो पार्लियामेंट के कामकाज को खुशसलूबी से जारी रखने के लिए तआवुन करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाऊ में मोल्दोवा की अपनी हमनसब माई सांदू से वफद की सतह की बातचीत करेंगी। मध्य प्रदेश काबीना कमेटी ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है। कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरे कार से बाहर रखा गया है। जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में ताज़ा सैलाब और ज़मीनी तोदे खिसकने से 11 अफराद हलाक हो गए, 8 अफराद अब भी लापता हैं। अमरीका ने ईरान पर फजाई हमले किए हैं। हमलों की ये नवी रात है जिसकी वजह से आबनाए हुरमुस से मुतालिक कशीदगी में मजीद शिद्दत आ गई है। और स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को इजाफी वक्त में 1-0 से हराकर 2026 का फीफा आलमी कप जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। 25 दिन के इस इजलास में 19 नशिस्तें होंगी। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: उम्मीद है कि इजलास के दौरान बहुत से अहम बिल बहस व मुबाहिसे और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। आज लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुताबिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाएगा। उधर राज्यसभा में कौमी एहतराम को नजरअंदाज करने की रोकथाम से मुताबिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाएगा। इन बिलों के अलावा पैदाइश और मौत के रजिस्ट्रेशन से मुताबिक तरमीमी बिल, इनकम टैक्स के तरमीमी बिल, बहुत छोटे और औसत दर्जे के कारोबार को तरक्की देने से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2026 पेश किए जाने की भी उम्मीद है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: मानसून इजलास के मौके पर हुकूमत ने कल पार्लियामेंट हाउस में एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जिसकी सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। 40 सियासी पार्टियों के 50 से ज्यादा रहनुमाओं ने मीटिंग में शिरकत की। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने मीटिंग के बाद नामानिगारों से खिताब करते हुए सभी सियासी पार्टियों से जोर देकर कहा कि वो पार्लियामेंट का कामकाज खुशसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाएं और बुनियादी मामलात पर तामीरी बहस मुबाहिसा करें।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कल लोकसभा की मुशावरती कमेटी के कामकाज से मुतालिक एक मीटिंग की सदारत की। इसी दौरान सरकार और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी करने वाले अरकान ने इस इजलास के दौरान कानून साजी और दीगर मुजवजा कामकाज के बारे में तबादले ख्याल किया। जनाब बिरला ने तामीरी बहस मुबाहिसे, बामाना शिरकत और आला तरीन पार्लियामानी अख्तार का ख्याल रखने की अहमियत पर जोर दिया। दिल्ली पुलिस ने वजाहत की है कि पार्लियामेंट के इजलास के पेश नज़र जो आज से शुरू हो रहा है, नई दिल्ली ज़िले में किसी भी एहतजाजी मार्च या जुलूस की इजाज़त न तो मांगी गई है और ना ही दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि मस्कूरा इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की दफ़ा 163 नाफिज है, लिहाजा जंतर मंतर को छोड़कर बाकिया इलाकों में एहतजाजी मार्च, जुलूस, मुजाहरे और 5 या इससे ज़्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाऊ में मोल्दोवा की अपनी हमनसब

0: या सांदू के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। सदर मुर्मू मोल्दोवा की पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत पार्लियामानी दोस्ती ग्रुप के अरकान से भी बातचीत करेंगी। इसके अलावा वो एक तजारती फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के अरकान से बातचीत करेंगी। किसी भारतीय सदर का मोल्दोवा का ये पहला दौरा है। सदर जमहूरिया तीन मुल्कों मोल्दोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर हैं। मोल्दोवा के अपने दौरे के बाद सदर जमहूरिया दूसरे मरहले में कल शिमाली मकदूनिया पहुंचेंगी। मध्य प्रदेश काबीना ने जगदीशपुर में, जो भोपाल के नज़दीक एक तारीखी कस्बा है, एक खसूसी मीटिंग के दौरान यकसा सिविल कोड UCC बिल को मंजूरी दे दी है। हमारे नामनिगार ने बताया है कि कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरे इख्तियार से बाहर रखा गया है। एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश ने यकसा सिविल कोड UCC पर अमल दरामद के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया है। कल भोपाल के जिले जगदीशपुर में काबीना की एक मीटिंग मुनाकिब की गई, जिसकी सदारत वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने की। इस मीटिंग में UCC बिल 2026 के मसौदे को इत्तेफाक राय से मंजूरी दे दी गई। अब इस बिल को रियासती असम्बली के मानसून इजलास में पेश किया जाएगा। ये इजलास आज से शुरू हो रहा है, जो 24 जुलाई तक जारी रहेगा। काबीना मीटिंग के बाद वजीर आला यादव ने नामा निगारों को बताया कि UCC से रियासत में इस यकसा सिविल कोड से रियासत के हर शख्स को बराबर की हैसियत फराहम होगी। उन्होंने कहा कि अब रियासत में कई शादियों की इजाज़त नहीं होगी। यकसा सिविल कोड के मुताबिक जो लोग लिव इन ताल्लुकात में रहेंगे, उन्हें एक महीने के अंदर अंदर इंदराज कराना होगा। शादी का रजिस्ट्रेशन गांव की सतह पर भी लाजमी होगा। अलबत्ता कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरेकार से बाहर रखा गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में कल बारिश की वजह से अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने से 11 अफराद हलाक और 8 लापता हो गए। राहत और बचाव टीमों ने सैकड़ों अफराद को बचाकर उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि राहत से मुतालिक कार्रवाइयां जारी हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस हादसे के बाद सूरत हाल का जायजा लिया और जम्मू और कश्मीर सरकार को यकीन दिलाया कि मरकज की तरफ से हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: राजौरी और पुंछ जिलों के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की रात आने वाले तबाहकुन सैलाब ने कीमती इंसानी जानों के इतलाफ के साथ निजी और सरकारी इमलाक, सड़क और बुनियादी ढांचों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। दोनों जिलों में सैकड़ों गाड़ियां या तो सैलाब में बह गईं या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है। पूरे जिले में बिजली की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हुई है, जबकि राजौरी जिले के तकरीबन निसफ इलाके में बिजली मुनकता हो गई है। जम्मू कश्मीर से गुलशन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: जुनूब मगरबी मानसून हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सरगर्म हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज और कल के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने रियासत के बहुत से हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की इंतबाह जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कांगड़ा जिले के धर्मशाला में 82.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शिमला में महकमा मौसमियात के मरकज ने बताया कि चंपा, कांगड़ा, मंडी और सुरमौर जिले में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए ऑरेंज अलर्ट और बिलासपुर, कन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि मौसम की मौजूदा सूरत हाल की वजह से अचानक सैलाब और बादल फटने के अलावा मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात पेश आ सकते हैं। इसी दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट के पेश नज़र कांगड़ा, चंबा और सुरमौर जिले की इंतजामिया ने आज सभी तालीमी इदारे बंद रहने का हुक्म दिया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: उत्तराखंड में कल सुबह से बारिश हो रही है, जिससे मैदानी और पहाड़ी इलाकों में जिंदगी मुतासिर हुई है। रियासत के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं और इंतजामिया अलर्ट के पेश नज़र हर किस्म की परेशानी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तफसील हमारी नामा निगार से।
3: भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जबकि उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, खोड़ी और उधमपुर नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के रेड अलर्ट के पेश नजर पहली से बारहवीं जमात के स्कूलों के लिए एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने सभी महकमों को चौकस रहने की हिदायत दी है। राहत और बचाव टीमों को तैयार रहने को कहा गया है। वजीर आला ने आवाम और यात्रियों से अपील की है कि वो महकमे

0: मौसमियात और इंतजामिया की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी पर अमल करें। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: उत्तर प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में मोतदिल से शदीद बारिश हो रही है, जिससे रियासत में मामूलत जिंदगी मुतासिर हुए हैं। तफसील हमारे नफानिगार से।
2: मुजफ्फरनगर जिले में शदीद बारिश के सबब एक पुरानी इमारत के मुनहदिम होने से चार बच्चों समेत पांच अफराद हलाक हो गए, जबकि पांच दीगर अफराद भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। इस दौरान संत कबीर जिले में एक प्राचीन मंदिर भी मुनहदिम हो गया है, लेकिन किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। शदीद बारिश ने रियासत के कई जिलों, जिनमें राजधानी लखनऊ शामिल है, मामूलाती जिंदगी को मुतासिर किया है। मुतादिद इलाकों में सड़क पर पानी जमा होने और ट्रैफिक के आमोदरफ्त में खलल पड़ने की इत्तलात हैं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: अमेरिका की मरकजी कमान सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरान पर ताज़ा फौजी हमले किए हैं और ये हमलों की लगातार नवीं रात है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा कि ईरान के खिलाफ ये ताज़ा हमले कल रात किए गए, जो ईरान की फौजी सलाहियतों को कमज़ोर करने के मकसद से जारी रहेंगे, जिन्हें ईरान आबनाए हुरमुस से गुजरने वाले कमर्शल जहाज़ों और शहरी मल्लाहों पर हमले करने के लिए इस्तेमाल करता रहा है, जिनमें अमरीकी फौजों ने ईरान के बहुत से फौजी असासों को निशाना बनाया है, जिनमें साहिली निगरानी और फजाई दिफाई ठिकाने, समंदरी तनसीबात और मिज़ाइल और ड्रोन के जख़ीरों की जगह भी शामिल हैं। अमरीकी फौज ने इस्लामी पासदारा ने इनकलाब की फौजों को भी निशाना बनाया है, जिन्होंने उर्दुन में 17 जुलाई को अमरीकी फौजियों पर हमले किए थे। ईरान में भारतीय सफारतखाने ने अदम इस्तेकाम और तनाज़े की हालिया शिद्दत के पेश नज़र भारतीय शहरियों के लिए एक ताज़ा हिदायत जारी की है। उसने किसी भी मकसद से ईरान का सफ़र करने वाले भारतीय शहरियों के लिए हिदायत जारी की है कि वो अपना सफ़र मुलतवी कर दें, जब तक के सलामती की सूरत हाल में बेहतरी ना आ जाए। हिदायत में कहा गया है कि जो भारतीय शहरी ईरान में मौजूद हैं, वो आर्जी तौर पर ईरान से निकलने पर गौर खौज करें और इसके लिए वो जो भी परवाज़ें दस्तयाब हैं उनका इस्तेमाल करें। सिफारतखाने ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय शहरियों को यह हिदायत भी दी है कि वो अपनी ज़ाती मालूमात सिफारतखाने में जल्द अज जल्द दर्ज कराएं। उसने ये बात भी जोर देकर कही है कि सिफारतखाने की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार नज़र रखें, ताकि वो ताज़ा जानकारी और मज़ीद हिदायत से बाखबर रहें। किसी भी तरह की मदद के लिए सिफारतखाने ने ये एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, +989128109115, +989128109109, +989128109102 और +989932179359। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में कल देर रात स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा आलमी कप 2026 का चैंपियन बन गया है। स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ जीत का वाहिद गोल खेल के 106वें छठे मिनट में किया। ये गोल स्पेन के फेरन टोरेस ने किया। इससे पहले दोनों टीमों की तरफ से 90 मिनट के खेल के दौरान सख्त जद्दोजहद के बावजूद कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई थी। स्पेन ने दूसरी बार मर्दों का फीफा आलमी कप जीता है। इससे पहले उसने 2010 में पहली मर्तबा आलमी कप जीता था। स्पेन के कप्तान को टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है, जिन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड से नवाजा गया है, जबकि स्पेन के ही उनाई सिमोन को गोल्डन ग्लोव का अवार्ड दिया गया है और पाउ कुबारसी को नौजवान खिलाड़ी का अवार्ड अता किया गया है। फ्रांस के खिलाड़ी लियान मबापे को फीफा आलमी कप 2026 का गोल्डन बूट अवार्ड नवाजा गया है। मर्दों की क्रिकेट में कल रात लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने तीसरे एक रोजा बैन अलाक्वामी मैच में भारत को 27 रन से हरा दिया। रोहित शर्मा के शानदार 138 रन, शुभमन गिल के 77 रन और विराट कोहली के 74 रन के बावजूद भारत की टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी, जिसे जीत के लिए 388 रन का निशाना मिला था। इस तरह इंग्लैंड ने यह सीरीज 2-1 से जीत ली है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
3: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शायद होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप और इनकलाब समेत आज के सभी अखबारों ने आज से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसूनी इजलास की खबर को सफ़े अव्वल पर शाई करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के इस बयान को नुमाया किया है कि सभी पार्टियां इस बात को यकीनी बनाएं कि पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी से जारी रहे, ताकि बिलों पर मुकम्मल बहस हो सके।
1: और आखिर में खास खबर एक बार फिर, पार्लियामेंट का मानसूनी इजलास आज से शुरू हो रहा है। हुकूमत ने सभी

0: सियासी पार्टियों से कहा है कि वो पार्लियामेंट के कामकाज को खुश उसलूबी से जारी रखने के लिए तआवुन करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाउ में मालदोवा की अपनी हमनसब माइया सांदू से वफद की सतह की बातचीत करेंगी। मध्य प्रदेश काबीना कमेटी ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है। कबायली बिरादियों को इस कानून के दायरे इख्तियार से बाहर रखा गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में ताज़ा सैलाब और ज़मीनी तोदे खिसकने से 11 अफराद हलाक हो गए, 8 अफराद अब भी लापता हैं। अमेरिका ने ईरान पर फजाई हमले किए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ।
1: आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी श्रीनगर का FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल पर आप ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। और इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं DTH तथा हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। 2026 की श्री अमरनाथ जी यात्रा का आज 18वां दिन है। कल 17वें दिन, जैसा कि आपको पता है कि यात्रा खराब मौसम के कारण फिलहाल अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है, और आगे आने वाली इत्तलात के बाद ही इस यात्रा को फिर से बहाल किया जाएगा, फिर से रिज्यूम होगी यात्रा दोनों मार्गों से, चाहे वो बालतल मार्ग हो या पहलगाम मार्ग हो। इसी बीच हम तक एक अपडेट आया है जिसके मुताबिक आज 271 यात्री पहलगाम से जम्मू की तरफ वापस रवाना किए गए हैं, और 1807 यात्री जो है वो बालतल से जम्मू की जानिब रवाना किए गए हैं। और जो जम्मू में यात्रियों के आने का सिलसिला है वो भी जारी है। जैसा कि हमने अपने संवाददाता जावेद मेहराब के साथ बात की थी, उन्होंने हमें मौसम के हवाले से अपडेट कराया था, और जो यात्री अभी आ रहे हैं और क्या कुछ इंतज़ाम हैं, मुख्तलिफ जो बेस कैंप्स हैं, यात्री निवास हैं, उनमें क्या इंतज़ाम हैं और मौसम के हवाले से भी उन्होंने हमें अपडेट करवाया था कि 23 तारीख तक फ़िलहाल यात्रा निलंबित है अस्थायी रूप से, और उसके बाद ही कोई फ़ैसला लिया जाएगा, क्योंकि जम्मू रीजन में जो है कल से बहुत ही तेज़ बारिशें हो रही हैं, और जो तवी रिवर है, तवी दरिया है, उसके पानी के स्तर में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफ़ी चौकन्ना, काफ़ी सतर्क रहने की जो सलाह है वो प्रशासन के द्वारा दी गई है। फ़िलहाल हम सब जो यहाँ पर यात्री रुके हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी खिदमत के लिए यहाँ पर हमेशा हाजिर हैं उनके लिए। और अब हम सीधा रुख करते हैं अपने श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायकू की तरफ, जिनसे हम श्रीनगर में क्या कुछ हालात हैं, मौसम के हवाले से क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास, उसके हवाले से उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि श्रीनगर में भी आज सुबह से ही बारिशें हो रही हैं, और बहुत ही तेज़ बारिशें श्रीनगर में, श्रीनगर और इसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे तेज़ बारिशें आज सुबह से ही हो रही हैं, जिसकी वजह से जो आम जीवन व्यापन है उसमें हल्का सा एक असर पड़ा है। हालांकि आज सोमवार का दिन है और सभी ऑफिसेज खुल रहे हैं, और लोगों को हालांकि थोड़ी सी दिक्कत होती है इस मौसम में आने जाने में और अपना कामकाज करने में। हमारे साथ श्रीनगर के संवाददाता हमारे इमरान नायकू जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। इमरान, आपका खैर मकदम है इस विशेष प्रसारण में।
2: जी, बहुत शुक्रिया।
1: इमरान, कल के दिन के हवाले से हमने अपने जो श्रोता हैं उनको ये अवगत कराया कि कल पूरे दिन यात्रा स्थगित रही और आज भी यात्रा फिलहाल के लिए स्थगित है। कल तो वैसे मौसम में ऐसी कोई तब्दीली ना तो जम्मू में और ना ही श्रीनगर में देखने को मिली। हालांकि जम्मू के ऊपरी कुछ इलाके हैं जहां पे बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिशें हुई हैं और कई जगहों पर तूदे गिराए हैं और काफ़ी ज़्यादा जानी व माली नुकसान हुआ है, लेकिन श्रीनगर की अगर हम बात करें तो कल क्या कुछ रहा मौसम का हाल और आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मौसम कैसा रहने वाला है?
2: देखिए, जैसा कि आपने भी कहा कि आज मंडे है और आज सभी ऑफिसेज खुले हैं, लेकिन जहां तक मौसम का ताल्लुक है, पिछले डेढ़ घंटे से श्रीनगर सिटी में काफी तेज बारिश हो रही है। इवन कि इस वक्त भी काफी

0: तेज और मूसलाधार बारिशें हो रही है,
1: जी
0: और जिसकी वजह से थोड़ी सी जो नॉर्मल लाइफ है वो इफेक्ट हो रही है,
1: बिल्कुल
0: और कई सारे इलाकों में जो है वाटर लॉगिंग हो रही है। लेकिन जहाँ तक श्रीनगर में जो पांथा चौक ट्रांजिट कैंप अमरनाथ जी यात्रियों के लिए रखा गया है,
1: जी
0: जैसे मैंने कल भी अपडेट किया था कि इस अमरनाथ यात्रा के इस पांथा चौक ट्रांजिट कैंप में किसी भी तरह की वाटर लॉगिंग का कोई जो है खतरा नहीं है, क्योंकि ये जो कैंप है इस तरीके से बनाया गया है और इसमें इस तरह से गवर्नमेंट ने पहले से ही एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारियां रखी है कि अगर पानी तेज भी आए, बारिशें भी हो, और इसमें पानी दाखिल होने का कोई जो है असर नहीं होता है उसका।
1: जी जी
0: और इसलिए अच्छी बात यह है कि इस श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप में कोई वाटर लॉगिंग वगैरह नहीं हुई है। ऑल दो कि हम देख रहे हैं कि जैसे कि पहले से ही मौसम विभाग ने या जो वेदर डिपार्टमेंट है उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि 20 तारीख से 23 तारीख तक, यानी 20 जुलाई से 23 जुलाई तक जम्मू के कुछ रीजन में इलाकों में तेज बारिश होंगी, और कश्मीर के भी कुछ जो इलाके हैं खासकर श्रीनगर शहर में काफी तेज बारिश होंगी। और जैसे कल भी हमने देखा मॉर्निंग में तकरीबन 2-2.5 घंटे तक मूसलाधार बारिश रही, तेज बारिश हो रही थी, उसके बाद
1: जी
0: पूरा दिन जो है या मौसम साफ रहा, धूप खिली या ठंडी हवाएं चली।
1: जी
0: और सेम आज भी हम देख रहे हैं कि जैसे 1.5 घंटे से काफी तेज बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से और विजिबिलिटी भी काफी लो है, धुंध भी छाई हुई है। लेकिन ओवरऑल जो प्रेडिक्शन है मौसम मौसम विभाग की या वेदर डिपार्टमेंट की, उसके
1: जी
0: मुताबिक ही अभी हम देख रहे हैं कि ये बारिश का असर हो ही रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ट्रांजिट कैंप में कोई असर नहीं है इसका वाटर लॉगिंग का, लेकिन बारिश तो हो रही है वो दूसरी बात है। और साथ साथ आज यहाँ से अमरनाथ जी यात्रियों के 600 से ज्यादा जो यात्री थे उनको जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कॉनवे में रवाना किया गया है। वो यात्री थे जिन्होंने अमरनाथ जी गुफा का जो पवित्र दर्शन है गुफा का वो मुकम्मल किया था,
1: जी
0: और
1: जी
0: आज इनको रवाना किया गया। जैसे
1: जी
0: आपने भी कहा कि आज भी मौसम खराब है, और इसलिए आज भी फिलहाल जो है अमरनाथ जी यात्रियों को दर्शन के लिए रवाना नहीं किया जा रहा है, उसको फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक दिया। लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जहाँ मौसम की प्रेडिक्शन अपनी जगह पे है और बारिश इस वक्त हो रही है, और उम्मीद की जा रही है कि 1-2 या 1.5 घंटे के बाद मौसम में बेहतरी आएगी, जैसे कल मौसम में बेहतरी आई थी। और पहले से ही डिपार्टमेंट ने कहा है, वेदर डिपार्टमेंट ने, कि ये जो बारिशें हैं ये बीच में बारिशें होंगी 1-1.5 घंटे, और उसके बाद फिर से मौसम में बेहतरी आएगी। और इसलिए इस ट्रांजिट कैंप में मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ कि
1: जी
0: किसी अमरनाथ यात्री को कोई दिक्कत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टो है, वो चाहे श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, या जितने भी जो हमारा जल शक्ति डिपार्टमेंट के महकमा है या हमारा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी के जो जो लोग हैं वो सभी ऑन टो है, ताकि किसी तरह से यात्रियों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और अभी हम देख रहे हैं कि कल बारिश होने के बावजूद भी किसी भी यात्री की कोई शिकायत नहीं रही, और यात्रियों के लिए यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने उस तरह की सारी फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कर रखी है।
1: जी उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने भी कल एक मीटिंग बुलाई थी इस हवाले से, और चीफ मिनिस्टर जो उमर अब्दुल्ला हैं उन्होंने भी इस हवाले से एक रिपोर्ट दिया था। आपके पास उन रिपोर्ट्स की क्या इतलात हैं, उनमें क्या डिस्कस हुआ और क्या कुछ लाहे अमल अपनाया जा रहा है?
0: देखिए बिल्कुल, जैसा कि मौसम की प्रेडिक्शन के मुताबिक जो परसों शाम को काफी तेज बारिश हुई राजौरी और पुंछ जो डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके बाद जहाँ जो वहाँ सूरत हाल बनी, और उस सूरत हाल के बीच में कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली से रवाना वापस हुए, वो दिल्ली थे, तो मौसम की सूरत हाल और वहाँ जो हालात बने वो जम्मू पहुंचे, और जम्मू में उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग भी ली जिसमें सभी जो डिपार्टमेंट्स के लोग थे उनके साथ उन्होंने बात की, और ओवरऑल ना सिर्फ लोगों या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये हिदायत दी कि लोगों को हर तरह की जो सहूलियात है वो रखी जाए, और खासकर मौसम के बीच में सारी चीजों को ख्याल रखा जाए, खासकर नेशनल ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है या बाकी डिपार्टमेंट है। इसी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कल, जैसा कि उनका एक बारामूला का विजिट था, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात भी की, और अपने उन उस एड्रेस में भी उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस और एनडीआरएफ एसडीआरएफ और बाकी उनके जो इख्तियार में महकमे हैं
1: जी जी
0: उन सबको हिदायत दी है कि वो इस सिचुएशन को मॉनिटर करें, और उनको हिदायत दी है कि किसी तरह की आवाम को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। खासकर उन्होंने यात्रा को लेकर पर्टिकुलरली जिक्र किया है कि वो यात्रा को खुद ही जो रेजी साहब है वो मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो।

0: और साथ में ये भी आपको बता दे चलो कि अमरनाथ यात्रा के लिए श्राइन बोर्ड जो है उनकी तरफ से 24/7 एक मॉनिटरिंग सेल लोक भवन श्रीनगर में एलजी ऑफिस के जो ऑफिस है वहां पे कायम किया गया है
1: जी।
0: और इस मॉनिटरिंग सेल के जरिए से पूरी मॉनिटर की जा रही है इस यात्रा को 24/7। और इसके अलावा ये भी हम बताते चले आपको कि श्रीनगर का जो एचएमटी इलाका है वहां पर इंटीग्रेटेड

0: मनवान बेस कैंप और ननवान बेस कैंप से लेके जो अमरनाथ गुफा है
1: जी
0: वहां तक सारी इन रूट्स पर मॉनिटरिंग की जा रही है इन जो यहां पे ये कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है। और इसलिए अमरनाथ यात्रियों से लगातार गवर्नमेंट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही गुजारिश है कि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अलबत्त अगर कहीं उनको लगे प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन उनके लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज रखी है, वहाँ फिजिकली काउंटर सेटअप्स किए गए, जैसे श्रीनगर के इस पांथर चौक ट्रांजिट कैंप में भी एक ऐसा हेल्प डेस्क कायम किया गया है, और अगर किसी भी यात्री को कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो इमीडिएटली वो वहां पे जा सकते हैं। और तो कि हम देख रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट बाकी महकमों के लोग भी जो है उनके काउंटर सेटअप किए गए हैं ताकि यात्रियों को हर तरह की जो खिदमत है या सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाए।
1: जी, इसका मतलब ये कि कुल मिलाकर पूरी जो प्रशासन है, पूरा जो पूरे जो डिपार्टमेंट है वो लगे हुए हैं और इंतजार सिर्फ इसी बात का है कि मौसम सही हो जाए और यात्रा फिर से चालू हो जाए।
0: बिल्कुल, दुआएं यही है कि मौसम जल्द से जल्द बेहतर हो जाए, सादगार हो जाए और अमरनाथ यात्री दोबारा से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किए जा सके। और गवर्नमेंट या प्रशासन की पहली प्रायोरिटी यही होती है कि यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मौसमी सूरत हाल के बीच में जिस तरह से बारिश हो रही है, फिर लैंडस्लाइड्स वगैरह का खतरा होता है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ने सारी जो अरेंजमेंट्स है उनको, जैसे मैंने कहा कि हैंडस्टोन दिया हुआ है, और श्रीनगर के पांथर चौक में ही नहीं बल्कि जहां जहां पर भी यात्रियों के रूट्स है, यात्रियों के स्टॉल्स है, यात्रियों के लिए जो ट्रांजिट कैंप कायम किए गए, हर जगह पे उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। और सिर्फ ये हम नहीं कह रहे बल्कि पहले दिन से हम यात्रियों से बात करें, उन यात्रियों से जिन्होंने पवित्र गुफा का दर्शन किया या वो यात्री जो पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन के लिए, तो सबका यही कहना है कि प्रशासन की तरफ से उनको अल्टीमेट जो फैसिलिटीज है वो रखी गई है।
1: जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुल मिलाकर जो आपने लेखा जोखा कल के दिन का और आज के दिन के हवाले से हमें बताया उसके लिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ हमारे श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायकू बात कर रहे थे और बता रहे थे कि जो श्रीनगर में पांथर चौक का ट्रांजिट कैंप है वहाँ कैसे इंतजाम हैं और पूरा प्रशासन किस तरह से लगा हुआ है, क्योंकि यात्रियों की जो खिदमत है, यात्रियों को जो सुविधाएं पहुंचाने का सिलसिला है उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। और हमारा भी उनसे यही निवेदन है कि आप अपना ख्याल रखें, जैसा आपको प्रशासन कहती है, जैसे आपके लिए दिशा निर्देश आते हैं आप उनका पालन करें और खुद को सुरक्षित रखें और इंतज़ार करें जैसे ही मौसम ठीक होगा आपकी सुविधा के लिए और आपको यात्रा के लिए ले जाया जाएगा, पूरी व्यवस्था की गई है उसके लिए। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए, इसमें जो कुछ भी हम कहते हैं, जो कोई भी अपडेट्स लाते हैं वो आपके लिए ही होती हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए और भक्ति संगीत एंजॉय करते रहिए।
2: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
2: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।
2: वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण जारी है और हमारा सिलसिला हमारे संवाददाताओं के साथ बात करने का भी जारी है। फिलहाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे संवाददाता एस तारिक साहब जुड़ चुके हैं। तारिक साहब, आपका खैर मकदम है इस ट्रांसमिशन में।
3: बहुत शुक्रिया
2: जी, बताइए क्या हाल चाल है, मौसम के हवाले से हमें अपडेट करवाइए और क्या कुछ रहा कल दिन में और आज के जो दिन की शुरुआत हुई कैसे हुई और कैसा माहौल है इस वक्त पहलगाम में।
3: बिल्कुल, आपको भी और सभी प्रिय श्रोताओं को भी मेरा सुप्रभात।
2: सुप्रभात।
3: पहलगाम की बात करें तो पहलगाम के अमरेश्वरी पर्वतों और आसपास के क्षेत्रों में आज आकाश उग्रालू है। मौसमी विभाग के अनुसार आज भी कहीं मध्यम तो कहीं तेज वर्षा होने की संभावना है, जबकि रात भर पहलगाम के और इसके इर्द गिर्द इलाकों में बारिशें हो रही थी। तो इस वक्त मौसम बिल्कुल ठीक है, अभी बारिशें नहीं हो रही, लेकिन रात भर बारिशें हुई। ये जो ट्रैक है बिल्कुल उसने फिसलन भी है। मौसम के इन्हीं तस्वीरों को देखते हुए श्री अमरनाथ जी यात्रा को यात्रियों की सुरक्षा और कुशलता के मद्देनजर आज लगातार दूसरे दिन भी आरजी ग्रुप से जो यात्रा है वो निलंबित रखी गई है, मोहतर रखी गई है। ये निर्णय यात्रा प्रशासन ने भारतीय मौसम विभाग की पेशगोई के आधार पर लिया है। इसके तहत आरजी नरवन चंद्रवारी और आदर्शोरू से किसी भी श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा की ओर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी है। हिमाचल से रवाना होने वाले हजारों भक्त पवित्र गुफा में दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। कल पंचतरणी में रात्रि विश्राम करने वाले जो श्रद्धालु थे उन्हें पवित्र गुफा जाने की अनुमति दी गई थी और इन सभी श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन किए और सुरक्षित रूप से अपने अपनी मंजिलों की ओर रवाना हुए। पहलगाम क्षेत्र से तकरीबन 271 दर्शन कर चुके यात्री जम्मू की तरफ आज रवाना हुए
2: जी।
3: तो वहाँ रुके हुए थे नरवन बेस के। अपने प्रशासन का कहना है कि जैसे ही मौसम में सुधार आएगा तो यात्रा मार्ग के सुरक्षित करार दिया जाएगा, तो श्री अमरनाथ जी यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन PRO जो जिनको कहते हैं यात्रा मार्ग का निरीक्षण और सर्वे कर रहे हैं ताकि मार्ग की पूरी तरह जांच की जा सके। आपको ये भी बता दूं, ये जो ऊपर जो पहलगाम क्षेत्र से जो यात्रा ट्रैक है बहुत इसमें बराबर भी जब भी बारिश होती है तो फिसलन पैदा होती है, इसके कारण उस पर ज्यादा जी हिफाजती जो निर्णय लिए जाते हैं कि यात्रा को छोड़ दिया जाए या नहीं छोड़ दिया है। तो जो रात भर बारिशें हुई तो उस वजह से बिल्कुल जो इस पर मुझे इन्फॉर्मेशन है यात्रा ट्रैक पे फिसलन भी है और इसके साथ ही जो PRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वो बिल्कुल कदम कदम पे टाइम टाइम पे उसकी नजर देख रेख कर रहे हैं और आगे इतना देते हैं। इस समय जो 8000 से अधिक यात्री नंदौर आदर्श शिविर में और पहलगाम के विभिन्न निजी होटलों में ठहरे हुए हैं, उन्हें आवास भोजन चिकित्सा और दीगर आवश्यक सुविधा प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई है। बिल्कुल वो सेफ है और अच्छी तरीके से अपने कैंपों में बैठे हैं। जैसे ही मौसम अनुकूल होगा तो यात्रा मार्ग के सुरक्षित करार दिया जाएगा तो उन्हें पवित्र गुफा के ओर रवाना किया जाएगा
2: जी।
3: जारी श्री अमरनाथ की यात्रा के दौरान अब तक जो हम आंकड़े भी बताएंगे या आंकड़े हमें जो मिले हैं वो 3,00,000 लगभग 80,000 से अधिक यात्रियों जो बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं। तो मौसम की जब पहले बात की, अभी फिर से दोबारा बात करेंगे इस बारे में कि आज

0: इसमें बादल छाए रहने की संभावना है, ऐसा मौसम से लगता है। तो इसी समय यह वातावरण का जो अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो दिन के दौरान बढ़कर 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आज रात भी आकाश में बिल्कुल बादलों से ढका रहेगा और देर रात कहीं कहीं हल्की और कहीं कहीं तेज बारिशों का अनुमान भी है। और एक बार जी मैं ये भी बता दूं कि आपके साथ ये साझा करना चाहूंगा कि यात्रा के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यात्रा के दोनों मार्ग पहलगाम और बालतल मेल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौसम की निरंतर निगरानी के लिए बालतल श्रीनगर बानिहाल जम्मू में जो डॉपलर वेदर रडार होता है स्थापित कर दिए हैं, ताकि ये आधुनिक प्रणाली या बादल फटने, मौसमदार जो वर्षा गरज चमक ओले वृष्टि और तेज हवाओं जैसे स्थानीय मौसमी खतरात के बरवक्त पहचान करते हैं और तुरंत चेतावनी जारी करते हैं, जिसके आधार पर यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा के आगे की जो स्वचालन से जुड़े निर्णय होते हैं वो लिए जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसमें आज पर साइंटिफिक तरीके से मौसमी रडार कायम किए गए हैं और वक्त से पहले ही जो यात्रा प्रशासन है उन्हें इतला दी जाती है कि मौसम की स्थिति क्या है और वो इसी के तरीके पे फिर आगे की रणनीति लेते हैं यात्रा के हवाले से।
1: मतलब ये कि प्रशासन हर एक तरीके से और हर एक क्षेत्र से इस यात्रा को सफल बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि जो हमारे यात्री हैं, हमारे मेहमान हैं, इन्हें किसी किस्म का कोई कष्ट ना हो, इन्हें किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका ना मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तफसीली जानकारी के लिए, और सुनकर बहुत खुशी हुई कि प्रशासन अपना काम बखूबी अंजाम दे रहा है और किसी भी यात्री को कोई भी शिकायत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे पहलगाम के संवाददाता इस तारीख बात कर रहे थे, और फिलहाल हम अपने जो संवाददाता है रहीम रिजवान, जो हमसे गांदरबल से बात करते हैं, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो गांदरबल का जो इलाका है, इसमें जो ट्रांजिट कैंप है, वहाँ क्या हालात हैं और बालतल बेस कैंप में क्या हालात हैं। रिजवान साहब, आपका खैर मकदम है इस ट्रांसमिशन में।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपसे यही सवाल कि कल से मौसम ख़राब है और कल से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मौसम कब सही हो जाए और कब यात्रा फिर से चालू हो जाए। कल के दिन के हवाले से आपके पास क्या मालूमात हैं, कल यात्रा और यात्रियों के हवाले से क्या कुछ नया ताज़ा हुआ, और आज के दिन के हवाले से जो मौसम में अभी सुबह से ही श्रीनगर में भी काफ़ी बदलाव दिख रहा है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
2: मौसम विभाग के अनुसार घाटी में मौसम खराब रहने के कारण यात्रा कल अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया, क्योंकि काफी वर्षा हुई है बालतल में भी और गांदरबल में। अगर हम मौसम की बात करेंगे तो इस वक्त भारी वर्षा हो रही है और बालतल के पूरे क्षेत्र में आकाश पे घने बादल छाए हुए हैं और धुंधला सा नजर आ रहा है चारों ओर। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यात्री जो है वो ट्रांजिट कैंप बेस कैंप में विश्राम कर रहे हैं और यहाँ ट्रांजिट कैंप शादीपुरा और ट्रांजिट कैंप मनगांव में भी ऐसी ही सूरत हाल बनी हुई है। तो बाजार और यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा जो है वो प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। और काम की बात करेंगे तो कल सवेरे वर्षा हुई सुबह 4 बजे से करीबन 10 बजे तक, तो उसके बाद मौसम में बेहतरी आई है, धूप खिलने लगी। तो इस दौरान जो पवित्र गुफा में यात्री रुके थे, जो पहलगाम नुनवन की तरफ से दर्शन के लिए गुफा की ओर रवाना हुए, वो पंचतरणी में रात भर रुकते हैं, तो उस रात भर रुकने के बाद उन्हें पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी जाती है। तो वही यात्री धीरे धीरे दर्शन करके बालतल बेस कैंप की तरफ आ रहे हैं। तो कल दिन भर जो यात्री रात देर 10 बजे तक यहाँ बालतल बेस कैंप पहुंचे हैं, वो उन्हें भी कहा गया है कि फिलहाल वो रात्रि विश्राम के लिए यहाँ बालतल बेस कैंप में ही रुके हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो पवित्र गुफा दर्शन करने के लिए यात्री गए थे वो धीरे धीरे सुरक्षित कल बालतल बेस कैंप पहुंचे। और आज सुबह सवेरे जो यहाँ पहले ही पहुंचे थे बालतल बेस कैंप में यात्री, तो सुबह सवेरे मौसम बिल्कुल ठीक ही था, आकाश पे अगरचे बादल छाए हुए थे, तो उन यात्रियों को भी यके बाद दी गई दुबेल कंट्रोल

0: पार करके पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी गई।
1: जी।
0: तो ऐसा मौसम वातावरण बना हुआ है पूरे भारतल के क्षेत्र में, अभी वहाँ वर्षा नहीं, यहाँ वर्षा नहीं हो रही है, अलबत्ता वर्षा होने की संभावना है क्योंकि आकाश पे घने बादल छाए हुए हैं। तो पूरी इस पे जो प्रशासन है उनकी कड़ी नजर इस पे बनी हुई है, जिसकी निगरानी डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जैतिन किशोर कर रहे हैं और सुरक्षा के हवाले से एसएसपी गांधरबल सुधांशु दामा बदलाता तो इसकी निगरानी कर रहे हैं बाल तक के पूरे क्षेत्र में। तो अगर हम ट्रांजिट कब मणिगाम की बात करेंगे तो ट्रांजिट कब मणिगाम में जैसा कि हम बार बार अपने श्रोताओं को ये सूचना देते हैं कि जो भी 5 बजे के बाद चाहे वो भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से यहाँ यात्री पहुंचेंगे या बारतल बेस कैंप से वापस दर्शन करके जो यात्री यहाँ पहुंचेंगे ट्रांजिट कम मणिगांव में या ट्रांजिट कम शादीपुरा में, उनको 5 बजे के बाद आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो उन्हें उन यात्रियों को रात भर इन्हीं ट्रांजिट कैंपों में कायम करना पड़ता है। तो इन ट्रांजिट कैंपों की भी बाजार निगरानी हो रही है। ट्रांजिट कैंप मणिगांव में जो एसपी आबिद रशीद मीर जिसकी सुरक्षा की जो निगरानी कर रहे हैं यहाँ पे कड़ी नजर उसकी बनी हुई है, बाजाबता तौर वो रोड पे खड़े होते हैं सुबह शाम से रात 10-11 बजे तक, जो 20 घंटे अलर्ट है यहाँ पे। और उसके साथ साथ जो एसपी जो आबिद रशीद मीर है उसके साथ जो हाँ यात्रा नोडल अफसर जो एसीआर गांधरबल भी है डॉक्टर शेख सलाहुद्दीन, दोनों सर जो है वो इसकी बाजाबता तो निगरानी कर रहे हैं और उनकी निगरानी में यात्रियों के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं ट्रांजिट मणिगांव में उपलब्ध रखी गई है और किसी भी यात्री को दाएं बाएं जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं और पूरी नजर उनकी बनी हुई है। इस तरह हम कह सकते हैं कि यात्री जो ट्रांजिट कम शादीपुरा में है, ट्रांजिट कम मणिगांव में है या बातल के पूरे क्षेत्र में बिल्कुल सुरक्षित है। हालांकि वर्षा हो रही है लेकिन प्रशासन ने इस पे पूरी नजर रखी है। तो फिलहाल जिस तरीके से जहां भी यात्री बैठे हैं वो सुरक्षित है।
1: जी, कल हमने देखा कि पंचतरणी में कुछ यात्री रुके हुए थे जिन्हें कल गुफा की जानिब रवाना कर दिया गया। 8000 से जायद यात्री थे। क्या बालतल के मार्ग से किसी यात्री को गुफा की जानिब जाने की इजाज़त दी गई और क्या जो आज है आज की डेट में ऐसा कोई आपके पास इतला है?
0: जी, जो भी यात्री वहाँ पंचतरणी में रुके थे कल, उनको मैंने पहले आपको कहा नुनमन बेस कैंप से जितने भी यात्री पवित्र गुफा की ओर जा रहे हैं वो रात भर पंचतरणी में रुकते हैं,
1: जी।
0: और सुबह सवेरे उनको गुफा की ओर जाने की अनुमति दी जाती है और वो यात्री बिल्कुल बालतल बेस कैंप से दर्शन करके सुरक्षित वापस आते हैं। इसी तरह जो बालतल बेस कैंप का अपडेट, अगर आज का अपडेट हम बताएंगे आपको तो सुबह 8 बजे तक 5805 श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी गई, जिसमें 4282 पुरुष, 1272 महिलाएं, 92 बालक बालिका, 24 साधु, 16 साधियां और 119 सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं इन यात्रियों में और इन यात्रियों को बाजाबता तौर पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी गई। इसी तरह अगर हम बात करेंगे गुज़श्ता शाम की, तो गुज़श्ता रात 11 बजे तक जो शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित बालतल बेस कैंप यात्री पहुंचे हैं उनका तादाद 8967 है, जिनमें 6302 पुरुष, 2342 महिलाएं, 105 बालक बालिका, 53 साधु, 4 साधियां, 3 ट्रांसजेंडर और 158 सुरक्षा कर्मी शामिल थे और ये यात्री रात के 11 बजे तक बालतल बेस कैंप पहुंचे हैं दर्शन करके। तो इन्होंने गुफा जाकर माता टेका शिवलिंगम का दर्शन करके देश एवं घाटी की अमन शांति तथा विकास के लिए प्रार्थना की और शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल बेस कैंप पहुंचे।
1: जी, हम यही दुआ करते हैं कि इनकी प्रार्थना, इनकी दुआएं कबूल हों, मंजूर हों और ये जो यात्रा का सिलसिला फिलहाल अस्थायी रूप से रुका हुआ है वो मौसम कि जल्दी बहाली से फिर से बहाल हो जाए और ये जो यात्रा का सिलसिला है वो फिर से चालू हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तफसीली जानकारी के लिए रिजवान साहब।
0: शुक्रिया आपका।
1: हमारे साथ हमारे गांधरबल के संवाददाता रहीम रिजवान बात कर रहे थे और हमें अवगत करा रहे थे जो कुछ भी कल से मुख्तलिफ ट्रांजिट कैंप्स जो बालतल बेस कैंप के साथ एडजॉइनिंग ट्रांजिट कैंप्स हैं वहाँ क्या हालात हैं और कितने यात्रियों ने कल पवित्र गुफा में

जाकर दर्शन किए। हालांकि ये वो यात्री हैं जो पंचतरणी में रात को रुकते हैं, जिन्हें एक दिन पहले ही वहाँ भेजा जाता है और वहाँ से फिर उन्हें सुरक्षित जो है वापस लाया जाता है। इसी तरह से आज की अगर हम बात करें तो आज भी सुबह के 9 बजे तक मुख्तलिफ मार्गों से 1768 यात्रियों ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए। इनमें 1126 पुरुष, 535 महिलाएं, 40 बच्चे, 2 साधु, 1 साध्वी और 64 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। हालांकि इस रास्ते पर दोनों जानेब पहलगाम और बालतल मार्गों पर फिसलन है, लेकिन फिर भी यात्रियों को काफ़ी सुविधा के साथ, काफ़ी सुरक्षा के साथ गुफा की जानिब रवाना किया जा रहा है। और जैसे ही प्रशासन को लगेगा कि नहीं, अब ये मार्ग पैदल चलने के लिए या यात्रा करने के लिए सुरक्षित नहीं है, तो यात्रा को उन मार्गों से फिर से रोका जाएगा। और इसी तरह से अभी हमारे पास एक इतला आई है कि अनंतनाग और इसके जो आसपास के इलाके हैं वहाँ बहुत भारी वर्षा हो रही है, नेशनल हाईवे पर भी हो रही है। लेकिन पहलगाम में जो मौसम है वो अभी ठीक है और पहलगाम का मौसम अभी वहाँ बारिश नहीं हो रही है, और हम उम्मीद यही रखते हैं कि मौसम की जो कृपा है वो हम पर बनी रहे और जो यात्रा है वो फिर से जल्द शुरू हो।

0: एक गोल से शिकस्त दी। स्पेन ने दूसरी मरतबा ये वर्ल्ड कप जीत लिया है। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हर 19 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हर 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DGH तथा हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।

0: ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 144-64 पे कॉल करें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर के FM बालतल, FM पहलगाम, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल और DTH के साथ साथ हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। पिछले 24 घंटों में कश्मीर और जम्मू अजला में जो बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं, बारिशें हुई हैं, उनका लेखा जोखा हम आप तक पहुँचाना चाहेंगे। पहले कश्मीर सूबे की बात करते हैं। श्रीनगर में कल पिछले 24 घंटों में 45.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। काजीगुंड में 0.1, पहलगाम में 3.2, कुपवारा में 0.8, कोकरनाग में 0.3, गुलमर्ग में 8.2, पामपोर में 21.5, श्रीनगर का जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसके करीब 3.2 मिलीमीटर बारिश, अवंतीपोरा में ज़्यादा बारिशें नहीं हुई है। अनंतनाग में 1.0, पुलवामा में 2.0, बड़गाम में 15.0 मिलीमीटर, गांधरबल में 46.0, सोनमर्ग में 0.5, बारामुल्ला में 1.5, बांडीपोरा में 10.5, इसी तरह से शोपियान में 3.0, कुलगाम में 0.2, खोडवनी में 2.0, संगम 2.5, अशम में 73.5 मिलीमीटर, वोलर झील में 54.5 मिलीमीटर, बटकूट में 2.5, वेरीनाग में बारिशें नहीं हुई हैं, बाबापोरा में 3.0, चारशरीफ में 3.2, टंगमर्ग में 8.2, सोपोर में 55.4, नवगाम हंदवारा में 14.6, लोलाब में 25.8 मिलीमीटर और इसी के साथ बुमहामा कुपवारा में 6.2 मिलीमीटर बारिशें पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड की गई हैं।

45.0 मिलीमीटर बारिश पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है। और मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान और आने वाले 3 दिनों में मौसम फिलहाल ऐसा ही बना रहने का अनुमान जताया गया है। और सभी आम लोगों से और यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और अपना ख्याल रखने की वार्निंग जारी की गई है। ख़ासकर जो बालाई इलाके हैं, इनमें पसियाँ गिराने, तूदे गिराने और फिसलन होने का जो अंदेशा रहता है, उसकी भी चेतावनी जारी कर दी गई है। और हमारी तरफ से भी आपको यही इतला है कि अपना ख़ास ख्याल रखें, ख़ासकर हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो यात्री हैं। अभी हमारे जो स्टूडियोज़ का जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर एक मैसेज आई थी। कलकत्ता से हमें एक सुनने वाले मैसेज कर रहे थे कि हमें यात्रा के बारे में बताइए, जो हम बार बार बता रहे हैं कि 23 तारीख तक फ़िलहाल यात्रा पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है और फ़िलहाल के लिए ये विशेष प्रसारण जारी है और आगे आप तक ताज़ा तरीन अपडेट्स हम पहुँचाते रहेंगे। आप ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए और इन्जॉय करते रहिए भक्ति संगीत।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह

0: में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानु यथा सद्मिद्वृधे।

0: श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4-5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहें। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR की आराधना चैनल, DTH तथा OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इन सारी प्लेटफॉर्म्स पर आप तक पहुंचने का एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है कि आप तक ताज़ा तरीन जानकारी पहुंचे यात्रा के हवाले से।

छोटा वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा इस वर्ष भी 16 दिन तक शांतिपूर्ण तरीके से और सुगम ढंग से चलती रही। इसी बीच लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त किए, किंतु 17वें दिन यानी कल ये यात्रा मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई। और ये आश्वासन भी दिलाया गया कि जैसे ही मौसम में परिवर्तन आएगा यात्रा फिर से जारी होगी। इसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि यात्रियों की सुरक्षा और उनको सुरक्षित महसूस कराने के लिए सारे इकदाम किए गए और यात्रियों को किसी भी कारण कोई भी कठिनाई ना हो। और प्रशासन के द्वारा उठाए गए इस कदम से श्रद्धालुओं में एक तरफ से तो आक्रोश जैसी स्थिति बनी हुई है, मगर दूसरी तरफ वो प्रशासन की इस कोशिश पर कि ये सब उनकी फ़िक्र के लिए किया जा रहा है, ये उनकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, उस पर भी संतुष्टि जताई है। और मुख्तलिफ बेस कैंप्स में जो यात्री बैठे हुए हैं अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि यात्रा कब फिर से शुरू होगी, उन्होंने भी धैर्य का परिचय फ़िलहाल के लिए दिया हुआ है और उनके इंतजाम में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। हालांकि जम्मू के जो ट्रांज़िट कैंप्स में यात्री हैं उन्हें फ़िलहाल बाहर घूमने के लिए अलाउ किया जा रहा है, वो बाज़ारों में जाकर मार्केट्स में जाकर शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं या बाहर वो खाना खाने के लिए जाते हैं। लेकिन पूरा उद्देश्य और पूरा मकसद इन सारी चीज़ों का यही है कि आपकी यात्रा जो आप मनोकामना लेकर आए हैं वो पूरी हो। कल से जम्मू के पहाड़ी इलाकों में बहुत तेज़ वर्षा हो रही है जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर फिसलन है, पस्तियाँ गिराई हैं और पानी का स्तर जो है जम्मू के मुख्तलिफ दरियाओं में वो बढ़ चुका है, ख़ासकर तवी रिवर की अगर हम बात करें, तवी दरिया की। और इसी बीच अगर हम बात करें तो जम्मू के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि आज से जम्मू में भारी वर्षाएं होने की जो संभावना है वो जताई गई है। और इस हवाले से उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर श्री उमर अब्दुल्ला जी ने भी अपने अपने तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, मीटिंग्स की हैं और सारे इंतजाम का वो खुद जायज़ा ले रहे हैं। और बानिहाल बालतल और पहलगाम मार्गों से ये जो यात्रा का सिलसिला है फ़िलहाल के लिए बंद है। और कुछ एक यात्रियों को जो कल पंचतरणी में रुके हुए थे परसों से, उन्हें कल और आज पवित्र गुफा की जानिब जाने की इजाज़त दी गई है और वो यात्रा करके वापस आ रहे हैं। और श्राइन बोर्ड जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा श्राइन बोर्ड और पूरा मैनेजमेंट जो है वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, मैनेजमेंट अपना काम कर रही है और मुख्तलिफ जो शोबे हैं, चाहे वो चिकित्सा का शोबा हो, जल विभाग हो या जितने भी विभाग इस यात्रा से जुड़े हुए हैं वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और हमारा काम यही है कि आप तक ताज़ा तरीन अपडेट्स पहुँचाते रहें। फ़िलहाल जो हमारे पास अपडेट्स थी हमने आपको दी हैं और आपको ये भी बता दें कि 1768 यात्रियों ने सुबह के 10 बजे तक पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं और इन्हें वापस बालतल के मार्ग से बालतल बेस कैंप पे जो है जमा किया जाएगा और वहाँ से उन्हें जम्मू की जानिब रवाना किया जाएगा अगर मौसम का हाल ठीक रहा तो। फ़िलहाल ये विशेष प्रसारण जारी है, आप हमारे साथ बने रहिए और भक्ति संगीत एंजॉय करते रहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण। और अभी हमारे पास एक ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट आया है, जिसके मुताबिक आज सुबह के 11 बजे तक कुल मिलाकर 4756 यात्रियों ने जाकर पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए, और ये सब यात्री अभी वापसी की राह पर गामजन हैं। और इनमें 3108 पुरुष, 1438 महिलाएँ, 88 बच्चे, 10 साधु, 4 साध्वी और 108 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं।

आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल और हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के अलावा आप ये प्रसारण DTH के माध्यम से भी समाप्त कर रहे हैं। अगर आप भी इस प्रसारण का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी कोई बात, अपनी कोई शिकायत, अपना कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर स्टूडियोज़ का 9596990954। जी हाँ, इस पर आप व्हाट्सएप या SMS के ज़रिए अपनी कोई भी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा हमारा एक ईमेल आईडी है जिसके माध्यम से भी आप अपनी कोई भी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। ईमेल आईडी है akashwanibaltal@gmail.com। इसके अलावा श्रीनगर और जम्मू के अजला के लिए 2 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स भी प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं, जिनकी मदद से आप प्रशासन से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। नंबर नोट करें, श्रीनगर के लिए नंबर है 1800-1807199 और इसी तरह से जम्मू के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800-1807198। जी हाँ, इन नंबरों के माध्यम से आप प्रशासन से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, अपना कोई भी सुझाव, अपनी कोई भी शिकायत उन तक पहुंचा सकते हैं। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 18वां दिन है और आपको पता होगा कि यात्रा कल से अस्थायी रूप से स्थगित है, क्योंकि मौसम पूरी घाटी में, चाहे वो जम्मू का हिस्सा हो या कश्मीर घाटी हो, यहाँ मौसम कल से बहुत ख़राब है और यात्रा को मुमकिन बनाना अभी आसान नहीं है, क्योंकि यात्रा मार्ग जो है वो फिसलन भरा होता है, बहुत कठिन होता है वहाँ चढ़ाई करना। और ख़ास कर से जो जम्मू से श्रीनगर गाड़ियाँ आती हैं, काफ़िले आते हैं यात्रियों को लेकर, उनका रास्ते में चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ख़ास तौर पर ये जो हिली एरियाज़ हैं जहाँ पर यात्रा होती है, जहाँ पर बाबा बर्फानी की गुफा है, वो वाला जो एरिया है वो बड़ा ही ख़तरनाक है, उस पर चलना इन हालात में आसान नहीं होता। इसीलिए प्रशासन ने फ़िलहाल टेम्प्रेरी तौर पर यात्रा पर रोक लगाई है। रोक इसीलिए लगाई है ताकि सारे यात्री सुरक्षित रहें, सारे यात्री फ़िलहाल जहां कहीं भी हैं वो सुरक्षित रहें, उनकी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और उनको खाने पीने का, उनकी चिकित्सा का या उनके आराम का पूरी व्यवस्था की गई है। इसलिए क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं, ये एक उम्मीद लेकर, आस लेकर आते हैं और हमें अपनी सेवा का मौका देते हैं। जम्मू में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है और जम्मू के जो बालाई इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ कल बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिशें हुई, जिसकी वजह से जम्मू के जो दरिया हैं, ख़ास करके तवी दरिया, जहाँ पर 2 ट्रांज़िट कैंप्स बनाए गए हैं यात्रियों के लिए, वहाँ पानी का स्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और आशंका जताई जा रही है कि पानी के स्तर में और इजाफा

होने की उम्मीद है, लेकिन सभी यात्री फिलहाल के लिए सुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए हर एक बंदा काम कर रहा है। जो पंचतरणी में कुछ यात्री रुके हुए होते हैं जिन्हें वहाँ पे रोका जाता है विश्राम कराने के लिए, कल भी उनमें से 8,700 के करीब जो यात्री हैं उन्हें पवित्र गुफा की जानिब जाने की इजाज़त दी गई, और इसी तरह से आज भी कुछ यात्रियों को पवित्र गुफा की जानिब जाने की इजाज़त दी गई, और आज दिन के 11 बजे तक कुल मिलाकर 4,756 यात्रियों ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए, जिनमें 3,108 पुरुष, 1,438 महिलाएं, 88 बच्चे, 10 साधु और 4 साध्वी के साथ साथ 108 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। यात्रा फिलहाल उन यात्रियों के लिए जारी है जो पवित्र गुफा के आसपास आधार शिविरों में बैठे हुए हैं, और जो नए यात्री आना चाहते हैं उन्हें फ़िलहाल के लिए यही संदेश दिया जाता है, यही सलाह दी जाती है कि आप फ़िलहाल रुकें, आप फ़िलहाल विश्राम करें, आप फ़िलहाल इंतज़ार करें, मौसम जैसे ही ठीक होगा यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। फ़िलहाल हमारा ये विशेष प्रसारण जारी है, हम आप तक आगे भी मज़ीद अपडेट्स लाते रहेंगे, इस प्रसारण का हिस्सा बने रहिए।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन डॉट कॉम पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले में सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले सदस्यों ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की बैठक 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि जब दोनों उत्पादक होते हैं तो इससे राष्ट्र का कल्याण और सभी जीवों की सुख शांति सुनिश्चित होती है।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की वैश्विक छवि को सार्वभौमिक मान्यता और स्वीकृति मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

0: ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं के साहस और दृढ़ता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा अपने साहस, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम के बल पर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं और यही विकासशील भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले दो दिन अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 की जीत दिलाई। और घरेलू शेयर बाजार सूचकांक लगभग 0.7% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगैन टुडे व्हेन द लोकसभा मेट एट 11 AM। द हाउस पेड ट्रिब्यूट्स टू 6 ऑफ इट्स फॉर्मर मेंबर्स हु पास्ड अवे रिसेंटली। द हाउस ऑल्सो पेड ट्रिब्यूट्स टू फादर अमीर ऑफ कतर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी। व्हेन द स्पीकर ट्राई टू टेक अप द क्वेश्चन आवर, द ऑपोजिशन मेंबर्स इंक्लूडिंग फ्रॉम कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी रेज द इश्यू ऑफ पेपर लीक ऑफ नीट एग्जामिनेशन। Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the house and maintain decorum, but the opposition members continued their protest, which led to adjournment of the Lok Sabha till 12 noon. In the Rajya Sabha, the proceedings began with the oath of the newly elected and re-elected members. During the proceedings, Leader of the Opposition Mallikarjun Kharge tried to raise the issue of NEET examination paper leak. However, due to uproar, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan adjourned the house till 12 noon. When the House met after the first adjournment at the noon, the opposition members continued their protests against NEET paper leak. The Rajya Sabha adjourned till 12:30 PM. Prime Minister Narendra Modi has said that be it the monsoon or the monsoon session, if both are proactive, they prove to be highly productive. Speaking to the media before beginning of the monsoon session of Parliament, he said, when both are productive, it leads to the welfare of the nation and the well-being of all living beings. Mr. Modi said, it is a powerful message that the potential and aspirations of the country's youth are boundless as space itself.
2: Monsoon ho ya monsoon satra, agar dono proactive ho, to bahut hi productive hote hain. और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे, मॉनसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे।
1: President Draupadi Murmu will hold delegation level talks with their Maldivian counterpart Maya Sandhu in Chisinau today. President Murmu will also meet the President of the Parliament of Moldova, Igor Grosu, and will interact with members of the Moldova-India Parliamentary Friendship Group. Further, the President will address a business forum and interact with the members of the Indian community. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that the interchange facilities and gates are now open at Rajiv Chowk and Central Secretariat Metro stations.

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, एआर न्यूज़ की आराधना चैनल, और इसके अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। आप सुनते रहिए हमें हमारा ये विशेष प्रसारण।
1: भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा, इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप

ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम ले और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण। आपको बताते चले कि अभी तक आप बने थे इकबाल कादरी के संग, और अब के बाद इस सफर में आपका साथ निभाऊंगी मैं, आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी।

इस यात्रा की यही विशेषता है कि ये शरीर से ज़्यादा मन की यात्रा है। ये हमें रोज़ाना बागडोर भरे जीवन से ज़रा दूर ले जाकर अपने आप से मिलने का अवसर देती है। और फिर कबीर दास ने क्या खूब ही कहा है कि जो अपने भीतर झांकने का साहस करता है वही आत्मिक शांति और सच्चा आनंद पाता है।

श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है इस विशेष प्रसारण में। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि मौसम में खराबी के कारण यात्रा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। मौसम में बेहतरी आते ही यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का ये विशेष प्रसारण।

श्रोताओं, तो हम आपको बता रहे थे कि आंकड़ों के अनुसार आज 4,000 से ज़्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। आपको बताते चलें कि इनमें

3108 पुरुष, 1438 महिलाएं, 88 बालक, 10 साधु, 4 साध्वियां और 108 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। आप सुनते रहिए हमारा ये विशेष प्रसारण।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण। जैसा कि मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ, श्रोताओं के सेवा भाव इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है। सभी सेवा दल, सुरक्षा बल, स्वास्थ्य कर्मी, यहाँ तक कि गाठी के मकामी लोग भी लगातार यात्रियों जो कि हमारे मेहमान होते हैं, उनकी खिदमत में लगे हुए हैं, श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हुए हैं। अगर आप भी यात्रा पर हैं तो प्रशासन की सभी सलाहों पर अमल करें, मौसम और मार्ग की ताज़ा सूचना पर ध्यान रखें और अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाएं। यही हमारी जो है आपसे विनती है। आप सुनते रहिए हमारा ये विशेष प्रसारण।

श्रोताओं, भगवान शिव की बात हो रही है और श्री अमरनाथ गुफा का भगवान शिव से ख़ास नाता है। रिवायत के मुताबिक इस पवित्र गुफा में भगवान शिव ने पार्वती जी को अमर तत्व यानी अमर होने का ज्ञान सुनाया था, इसलिए हर साल लाखों श्रद्धालु दुश्वार रास्तों से गुजरते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए इस पवित्र यात्रा में शरीक होते हैं। बर्फ़ से कुदरती तौर पर बनने वाला ये शिवलिंगम श्रद्धा और आस्था का मरकज़ है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण और शिव जी की बात हो रही है शिव भजन में। श्रोताओं, शिव का एक नाम आशुतोष भी है, यानी वो जो सच्चे भाव और भक्ति से जल्द खुश हो जाए। इसलिए हिंदू धर्म में भक्ति के साथ साथ निर्मल मन, सादा जीवन और अच्छे आचरण को भी बहुत अहमियत दी जाती है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। इस वक्त मेरे साथ और मैं हूँ आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी। बात हो रही थी शिव जी की। अगर हम शिव जी की तालीमात की बात करें, उनकी शिक्षा की बात करें, तो वो भी हमें यही संदेश देते हैं कि सादगी, सहनशीलता, दया और सच्चाई ही जीवन का सच्चा मार्ग है। क्रोध पर नियंत्रण, अहंकार का त्याग और सभी जीवों के प्रति समान और प्रेम रखना ही शिव तत्व या शिव की शिक्षा है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन AIR की अरहाधना चैनल, इसके अलावा आप हमें DTH के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, अभी समाचार का वक्त हो रहा है, तो सीधे चलते हैं हम समाचार सुनने के लिए।

0: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू हो गया है। अपोजिशन की हंगामाराई के तनाजुर में दोनों ऐवानों की कार्रवाई कई बार मुलतवी करना पड़ी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास को मुफीद बनाए जाने पर जोर दिया है और कहा है कि इससे मुल्क की बहबूद की राह हमवार होगी। सुप्रीम कोर्ट में उन दरखास्तों की समाअत होने वाली है जिनमें राम मंदिर चढ़ावे में खुर्द बुर्द किए जाने के केस की तहकीकात की अपील की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की अपनी हमनसब के साथ वह सतह की बातचीत करने वाली हैं और आबनाए हुरमुज के मामले पर अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू हो गया है। लोकसभा की कार्रवाई जब दिन में 11 बजे शुरू हुई तो ऐवान के उन 6 साबिक अरकान को खिराज अकीदत पेश किया गया जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। इनमें एन भास्कर राव, ओमवती देवी, सुधांशु सील, मेजर जनरल रिटायर्ड भवन चंद्र खंडूरी और केपी धनापालन और प्यारे लाल संखवार शामिल हैं। ऐवान में कतर के अमीर के वालिद शेख हमद बिन खलीफा आले सानी को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा आले सानी ने भारत कतर ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में अहम रोल अदा किया था। जनाब बिरला ने कहा कि कतर के अमीर के वालिद 18 साल तक इस ओहदे पर फायज रहे और जदीद कतर की बुनियाद रखी।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: स्पीकर मौसूफ ने जब सवालों के वक्फे की कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत अपोजिशन अरकान ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने का मामला उठाया। जनाब ओम बिरला ने अपोजिशन पर जोर दिया कि वह ऐवान का कामकाज चलाने में ताउन करें और ऐवान का वक़ार बरकरार रखें, लेकिन अपोजिशन अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा और लोकसभा की कार्रवाई दिन में 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसके बाद जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो शोरगुल जारी रहा और ऐवान की कार्रवाई 12:30 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्रवाई नए मुंतखब और दोबारा मुंतखब किए गए अरकान की हलफबरदारी के साथ शुरू हुई। बाद में ऐवान के उन साबिक अरकान को खिराज अकीदत पेश किया गया जिनका पिछले इजलास के बाद इंतकाल हुआ है। अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने का मामला उठाने की कोशिश की, अलबत्ता शोरगुल के तनाजुर में राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने ऐवान की कार्रवाई दिन में 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो अपोजिशन अरकान ने नीट इम्तिहान मामले पर नारेबाजी शुरू कर दी और एहतजाजी

0: जारी रहने पर सदर नशी ने कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खा मानसून हो या मानसून इजलास, अगर ये दोनों सरगर्म रहते हैं तो ये इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू होने से कबल मीडिया से बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब दोनों ही समर आवर होते हैं तो इसके नतीजे में मुल्क की बहबूद और सभी जानदारों की भलाई की राह हमवार होती है। वजीर आजम ने कहा कि ये एक मजबूत पैगाम है कि मुल्क के नौजवानों की सलाहियत और उनकी उमंगें उतनी ही लामहदूद हैं जितना कि खुद खला है।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: जनाब मोदी ने कहा कि सिर्फ एक महीने के अरसे में मुल्क ने कई संगे मील और कई कामयाबियां हासिल की हैं, जिससे हर शहरी फख्र से सरशार हो जाता है। वजीर आजम ने कहा कि खा ये कौमी मंजरनामा हो, बैन अल्अक्वामी प्लेटफॉर्म हो, और अब हत्ता के खला में भी भारत के लिए वाकई बड़े फख्र के लम्हात रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि मुख्तलिफ खित्तों में पूरी दुनिया को लगातार जंग के खतरे से तशवीश लाहक है। उन्होंने कहा कि मगरबी एशिया में महाज आराई से भारत जैसे मुल्कों को बड़े बुहरान का सामना है, जो तवानाई के लिए दूसरे मुल्कों पर इन्हेसार करते हैं।
1: पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए औरों पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, यानी हर विषय में अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए, उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कानून और इंसाफ महकमे के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया। इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक 1956 के एक्ट में मजीद तरमीम करना है, ताकि अदालत आलिया के जजों की तादाद मौजूदा के 33 से बढ़ाकर 37 की जा सके, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस शामिल नहीं है। इस साल मई में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के सिलसिले में एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। उत्तर प्रदेश सरकार की जानिब से तश्कील दी गई खसूसी जांच टीम SIT ने राम मंदिर में मुबैना चढ़ावा चोरी केस में अपनी कार्रवाई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। ये रिपोर्ट एक मुहरबंद लिफाफे में भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत

में मुबैना चढ़ावा चोरी केस में अपनी कार्रवाई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। ये रिपोर्ट एक मुहरबंद लिफाफे में भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली 3 जजों की बेंच को पेश की गई। अदालत आलिया आज इस मामले की समाअत करने वाली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चीसी नाव में मालदोवा की अपनी हमनसब माइया सांडो के साथ वफ सतह की बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया मालदोवा की पार्लियामेंट के सद इगोर गोरोसू से भी मुलाकात करेंगी और मालदोवा भारत पार्लिमानी दोस्ती ग्रुप के अरकान से बातचीत करेंगी। इसके अलावा वो एक तजारती फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के अरकान से मिलेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का मालदोवा का यह पहला दौरा है। सदर जमहूरिया 3 मुल्कों मालदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर हैं। मालदोवा के अपने दौरे के बाद सदर जमहूरिया दूसरे मरहले में कल शिमाली मकदूनिया पहुंचेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का शिमाली मकदूनिया का भी ये पहला दौरा है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक अक़वामे मुत्तहदा फ्रेमवर्क कन्वेंशन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी साइमन निस्टिल से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब यादव ने कहा कि मुलाकात के दौरान आबोहवा की तब्दीली की रोकथाम के तरीक़ेकार को अपनाने, टेक्नोलॉजी की मुंतकली, माहौलियात से मुतालिक मालियात जैसे मौजूदात पर तवज्जो मरकूज की गई। ईरान और अमेरिका ने लगातार 9वें दिन एक दूसरे पर हमले किए हैं। कलीदी अहमियत की हामिल आबनाए हुरमुस के मामले पर कशीदगी में इजाफा हो रहा है। अमेरिका ने जुनूब मगरबी ईरान में हुरमुज कस्बे को निशाना बनाया, जबकि उर्दुन, कुवैत और बहरीन में फिर से ईरान के

0: कार्रवाई कई बार मुलतवी करना पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास को मुफीद बनाए जाने पर जोर दिया है और कहा है कि इससे मुल्क की बहबूद की राह हमवार होगी। सुप्रीम कोर्ट में उन दरखास्तों की समाअत होने वाली है जिनमें राम मंदिर चढ़ावे में हुर्दबुर्द के जाने के केस की तहकीकात की अपील की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा के अपने हमनसब के साथ वफ सतह की बातचीत करने वाली हैं और अबनाए हुर्मुज के मामले पर अमेरिका और ईरान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Monsoon session of Parliament begins today. Both houses witness multiple adjournments amid opposition uproar. Prime Minister Narendra Modi calls for productive monsoon session of Parliament, says it will lead to welfare of the nation. Supreme Court to hear pleas seeking probe into Ram Temple donations theft case today. President Draupadi Murmu holds delegation-level talks with her Moldovan counterpart, Maia Sandu, in Chisinau. And IMD issues red alert warning for heavy to very heavy rainfall over parts of Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. The monsoon session of Parliament began today. The Lok Sabha and the Rajya Sabha have been adjourned till 2 p.m. amid opposition protest over the NET paper leak issue. When the House met after the third adjournment at 1 p.m., the opposition members continued with their protest over the NET issue. Presiding Officer Dilip Saikia tried to take up the scheduled business, but the opposition members did not pay heed to the Chair's advice and continued with their protest. Amid the uproar, the Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. Earlier, when the Lok Sabha met at 11 a.m., the House paid tributes to six of its former members who passed away recently. When the Speaker tried to take up the question hour, the opposition members, including from the Congress and the Samajwadi Party, raised the issue of paper leak of NET examination. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the House and maintain decorum, but the opposition members continued their protest, which led to adjournment of the Lok Sabha till 12 noon.
2: ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपराओं और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको

0: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: टू पुट फोर्थ माई व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों के भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: I appeal to members across all sides of the house to uphold the dignity, discipline and decorum of this august institution. While differences of opinion are integral to parliamentary democracy, they must be expressed in a manner that preserves the sanctity of the house.
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
4: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित 4 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व

0: तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के तीन बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440 करोड़ 42 लाख रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने तीन देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: मालदोवा की पहली राज्य की यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्डोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमेरिका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमेरिका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई तीन मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाए। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर

0: लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले 2 दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2000

26 का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल, और इसके अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम में खराबी के कारण यात्रा को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। मौसम में बेहतरी आते ही यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का ये विशेष प्रसारण।

अपने संवाददाताओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे मौसम के हवाले से अपडेट्स और बाकी सूरत हाल। तो तब तक आप सुनते रहिए हमारा ये विशेष प्रसारण।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि हमारे जो मुख्तलिफ संवाददाता है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, तो इसी बीच हमसे इस वक्त जुड़े हुए हैं जम्मू से जावेद मेहराब साहब। हम इनसे जानते हैं जम्मू के सूरत हाल। जावेद साहब, हम आपका स्वागत करते हैं इस विशेष प्रसारण में।
1: जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बताऊँ कि पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर जो पिछले दो दिनों से प्रतिबंध लगाया गया है, यहाँ से रवाना नहीं हो रही है, एक आरजी तौर पर अभी रोका गया है। मौसम के चलते ये फैसला किया गया था। तो हालांकि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में, इस संभाग के पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में बारिशें, क्लाउड बर्स्ट, भूस्खलन चारों तरफ हो रहे हैं, लेकिन शहर में

0: रात को और सुबह थोड़ा बहुत बारिश हुई, कोई ज्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन तभी नदी का जो स्तर है
1: जी
0: वो
1: जी
0: पानी में का बड़ा हुआ है। इसी के चलते हालांकि मौसम विभाग की तरफ से लगातार भविष्यवाणियां आ रही हैं, लगातार वो अपडेट कर रहे हैं अपने मौसम की भविष्यवाणी को, तो उसमें अभी तक जम्मू में रेड अलर्ट ही है जम्मू संभाग में, और ये लगभग 23 तारीख तक उन्होंने बताया है कि
1: जी जी
0: बारिशें रुक रुक कर तेज भी होंगी, उस दौरान भूस्खलन भी होंगे,
1: जी जी
0: बहुत सी और चीजें होने का, क्योंकि ये सारा पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसमें जैसे ही बारिश होती है तो सारा जो पानी है ये तभी नदी के अंदर ही आता है, लगभग समझ ले आपके जो उधमपुर से ऊपर जितना एरिया है वहां से बिल्कुल सारा पानी तवी नदी में आता है, तो तवी नदी का स्तर जो है वो काफी बढ़ चुका है, और जिसकी वजह से यहाँ कई जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार तीर्थ यात्रियों को स्थानीय लोगों के बीच ये ऐलान करते दिखाई देखी जा सकती है कि वो बिल्कुल लोगों को तवी नदी के करीब ना जाने, पानी के करीब ना जाने की सलाह दे रहे हैं, और खासतौर पर श्रद्धालुओं को जो हालांकि हमारा जो सबसे बड़ा जो कैंप है पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा का तवी रिवर फ्रंट, वहां पर पूरी तरह से सिक्योरिटी और पुलिस और जो सीआरपीएफ के दस्ते हैं वो बाजाबता लगाए गए हैं, और वो तीर्थयात्रियों की पड़ताल के बाद ही उन्हें तवी नदी की तरफ से तो नहीं लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें जाने आने की इजाजत देते हैं। तो इस बीच माता वैष्णो देवी जी की यात्रा जो यहाँ लगभग साल भर चलती रहती है, और चूंकि श्री अमरनाथ जी की भी यात्रा है, तो इस बीच ये दोनों यात्राएं अभी सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी बंद है, और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस अस्थायी रोक जारी रखने का फैसला किया है।
1: जहां साहब जिस तरह मौसम ने अपने मिजाज बदल लिए हैं, क्या यात्री जो है वो कैसा महसूस कर रहे हैं, कहीं उनका वो इंतजार जो है वो लंबा तो नहीं हो रहा है, उनके क्या तासरात हैं?
0: देखिए जो अभी तक के जो श्रद्धालु जो यहाँ पहुंच भी रहे हैं, चाहे वो मुख्य द्वार लखनपुर से यहाँ पहुंच रहे हैं या रेल के माध्यम से पहुंच रहे हैं, जहाँ लखनपुर के माध्यम से पहुंच रहे हैं वहाँ उन्हें वहीं के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कठुआ सांबा विजयपुर वहाँ ही ट्रांजिट कैंप्स में उन्हें रोका जा रहा है,
1: जी जी।
0: क्योंकि यहाँ उनको बेच के यहाँ के ट्रांजिट कैंप्स पर और लोड बढ़ जाएगा, तो इसलिए वहीं के ट्रांजिट कैंप में उन्हें रखा गया है। यहाँ के ट्रांजिट कैंप्स में जो है वो उनके पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है, क्योंकि देखिए जो हमारी बात हुई है, क्योंकि उनको भी पता है कि महकमे की मौसमियात के मुताबिक जो आईएमडी की और स्थानीय जो मौसम विभाग है उन्होंने दोनों ने ये कहा है कि जो मौसम है वो अभी खराब रहेगा, और खराब मौसम में वो भी अपने आप को जोखिम में नहीं डालना चाहते, वो ये कहते जरूर है, उन्हें बिल्कुल उसकी बेचैनी जरूर है कि जल्द से जल्द ये मौसम ठीक हो और वो अपना सफर तय करके वापस अपने घरों को लौटे।
1: तकरीबन कब तक यात्रा फिर से शुरू होने के इम्कान है?
0: जो प्रशासन ने अभी तक बताया है उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि मौसम में सुधार होने और मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित होने के बाद ही श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शन की अनुमति मिलेगी, तो ये कम्प्लीटली उन्होंने स्पष्ट करके रखा हुआ है, और ये एडवाइजरी लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें जो कह रही है या यहाँ पर जो जो ट्रांजिट कैंप्स के अंदर जो हेल्पलाइन है अलग अलग जगह है जहाँ से ये सारी सूचनाएं बाहर आती है, और खासतौर पर उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही फैसला किया जाता है, क्योंकि किसी तरह का क्योस कंफ्यूजन सरकार प्रशासन भी नहीं चाहती। पूरी जानकारी तीर्थ यात्रियों श्रद्धालुओं तक पहुंचाई जाती है ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो कि किस तरह से क्या हालात यहाँ मौसम के बने हुए हैं, और मौसम सामान्य होने तक वही उन्हें ठहरने की अपील की जाती है, और पूरी तरह से जो ये एरिया है यहाँ, हालांकि अभी जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू शहर में रात को और सुबह के वक्त थोड़ी बहुत बारिश हुई है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र से जहाँ से तीर्थयात्रियों को घाटी की ओर जाना है वो अभी बंद किया हुआ है, और वहाँ क्योंकि जब ये संभावना होती है जब मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है तो उसमें प्रशासन किसी तरह से कोई रिस्क नहीं ले रहा है। हालांकि कश्मीर घाटी से जो हमारे पास जानकारी है, कश्मीर घाटी से लगातार जो तीर्थयात्री जम्मू की तरफ आ रहे हैं उनके लिए रास्ता खुला है
1: जी जी,
0: लेकिन जम्मू से जो तीर्थ यात्री अभी अपनी जो उनको पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि मौसम के सुधार होने के बाद ही उन्हें इजाजत होगी,
1: क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, ये यात्रों के उन्हीं की जो है सुरक्षा के लिए ये बंदिशें जरूरी होती हैं, तो इसलिए
0: क्योंकि रविवार को जैसे आपको पता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के कारण कई इलाकों में हालात चुनौतीपूर्ण हो गए थे और कई पहाड़ी स्थानों पर बादल फटने, भूस्खलन, फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आई हैं। लगभग कोई 12 के लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं इस पूरे क्षेत्र में, और उसके अलावा जो संपत्ति का नुकसान हुआ है वो अलग से है। खुद चीफ मिनिस्टर जो है वजीराना उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, उन्होंने मतलब यहाँ सचिवालय में बाजाबदा इस बैठक की अधिकारियों के साथ, उसके अलावा जो उपराज्यपाल है उन्होंने अलग से बैठक की, ताकि श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों के भी माल और जान की हिफाजत हो, और उसी के लिए यहाँ बाजाबदा जम्मू में पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सीआरपीएफ तैनात की गई है, और 2400 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय रखने को कहा गया है। मौसम विभाग ने 24 तारीख तक जम्मू के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। हालांकि जम्मू में मौसम बिल्कुल साफ नहीं है, बादल है, और कभी भी बारिश का, क्योंकि आजकल जो बारिश होती है मौसम की वो अलग, बहुत कई कई बार तेज हो जाती है, कई बार पहाड़ी क्षेत्रों में खतरनाक रेले आ जाते हैं पानी के, तो उस स्थिति में श्रद्धालुओं की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं दिया जा सकता कि मौसम
1: अचानक,
0: ये सारी जो बिल्कुल जो ये आराम और ये जो फैसला लिया गया है स्थानीय प्रशासन की ओर से, ये हालांकि बिल्कुल सही फैसला है। इसमें तकलीफ जरूर हो सकती है जल्दी जाने की, वहां अपने दर्शन कर वापस लौटने की, लेकिन वो तभी मुमकिन हो सकता है जब तक के मौसम बिल्कुल साफ ना हो। हालांकि अभी तक बिल्कुल मौसम साफ था तो किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन जैसे ही मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी आई और उसमें श्रीनगर शहर में भी बारिश हुई है बहुत सख्त तेज, यहाँ एरिया में जो जानकारी जानकारियां मिली है बारिश बहुत तेज है, और इन्हीं रास्तों से होकर तो उन्होंने गाटी क्रॉस पहाड़ी श्रृंखला तक पहुंचना है, और पहाड़ी श्रृंखलाओं में सफर फिर और सख्त हो जाता है अगर मौसम विपरीत है उसके, तो इसलिए उन सारी चीजों के मद्देनजर ही, क्योंकि ऐसी बात में बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर ये सतर्कता बनाई गई है, और ये सतर्कता होनी भी चाहिए तभी, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम अपने मेहमानों की पूरी तरह से सुरक्षा और उनकी उनकी जो सेहत है, उनका जो बाजाबता उनका जो ख्याल रखना है उसको हम सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि ये दिया भी गया है, ये जो फैसला लिया भी गया है। हालांकि यहाँ जो निवास स्थान है उन पर भोजन, चिकित्सा, आराम, योग, पूजा अर्चना, भजन, पानी, बिजली की व्यवस्थाएं रखी गई है। सावन का महीना भी आ चुका है तो इसमें पूजा अर्चनाएं भी इन मंदिरों और जो स्थल है वहां पर बराबर होते हैं, तो उसी को लेकर यहाँ लोग अभी समझ रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय मंदिरों में रघुनाथ बाजार, पीरखो, रमेश्वर मंदिर, उसके अलावा बहुत से, क्योंकि ये मंदिरों का शहर है तो यहाँ चारों तरफ सावन के महीने में खासतौर पर पूजा अर्चनाएं भी होती है, और उसमें खुलकर जो है जो अपने श्रद्धालु है वो हिस्सा भी लेते हैं और मंत्रमुग्ध भी हो रहे हैं श्रद्धालु यहाँ अभी रुक के। अभी तक कोई ऐसी ह्यूमन क्राई देखने को नहीं मिली है, प्रशासन ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है 23 तारीख तक की एडवाइजरी है, और जैसे ही उन्हें मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी मिलेगी, मौसम साफ हो गया, तो वो यहाँ से श्रद्धालुओं को रवाना करेंगे गाटी की ओर।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मेहराब साहब हमसे जुड़ने के लिए। आपने सही कहा कि हर एक यात्री की जो जिंदगी है वो हम सब की प्रायोरिटी है, हमारे लिए अभी वही सबसे जरूरी है, उसके बाद जो है यात्रा फिर से हो जाएगी शुरू। चले, बहुत शुक्रिया। बहुत
0: मौसम ठीक होने तक श्रद्धालुओं को मैं एक सबक जरूर कहूंगा कि मौसम ठीक होने तक श्रद्धालुओं को सबर का दामन हमें रखना है,
1: बिल्कुल धीरज से काम लेना होगा,
0: धीरज से काम लेना होगा, तभी ये सारी व्यवस्था जो सारी व्यवस्था है ये भी कामयाब होगी, और जो ये आंकड़ा इतना बड़ा भी है ये उन्हीं सारे फैसलों की वजह से ही हुआ है, और आगे भी ये जारी रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
0: बहुत शुक्रिया।
1: ओके। श्रोताओं, ये थे जम्मू से जावेद मेहराब।

सब हम और भी हमारे जो संवाददाता है मुख्तलिफ क्षेत्रों से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जब तक हम एक और मोहम्मद तस्कीन साहब जो रामबन से हैं उनसे जुड़ेंगे, तब तक आप भक्ति संगीत एंजॉय कीजिए।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम अपने मुख्तलिफ क्षेत्रों में जो हमारे संवाददाता हैं उनसे बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो अभी अभी हमसे जुड़ चुके हैं मोहम्मद तस्कीन साहब रामबन से। तो इनको हम इनको सुनते हैं कि क्या सूरत हाल है वहाँ। मोहम्मद तस्कीन साहब, आपका स्वागत है इस विशेष प्रसारण में।
1: जी, बहुत शुक्रिया
0: जी। तस्कीन साहब, अभी हमने मेहराब साहब से बात की जम्मू के हवाले से, तो हम जानना चाहेंगे कि रामबन की क्या सूरत हाल है, क्या मौसमी अपडेट्स है वहाँ पर।
1: जैसा कि महकमा मौसमियात ने पहले ही जो पेशन गोई कर रखी है, प्रेडिक्शन कर रखी है, तो उसी के मुताबिक आज सुबह से बारिशें हुई, अच्छी खासी बारिशें हुई पूरे रामबन सेक्टर में, पूरे रामबन जिला में। तो अलबत्ता इन बारिशों का जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कोई असर नहीं पड़ा। जो मामूल का ट्रैफिक है वो चल रहा है और अभी भी चल रहा है, और आज यात्रा दूसरे रोज भी सस्पेंड थी मौसमी खराबी की वजह से। पहले ही ये फैसला लिया गया, कल 19 तारीख से यात्रा को मौतल किया गया है आरजी तौर से। इस दौरान जो बालतल और पहलगाम से जो वापस यात्री आ रहे थे वो काफले यहाँ से गुजर गए हैं। उस वक्त बारिशें हो रही थी सुबह के औकात में, पहला काफला पहलगाम का, और ये करीबन 12:30-1 बजे के आसपास जम्मू पहुंच गया। तो 271 यात्री थे इसमें, 8 गाड़ियों में सवार थे, जबकि बालतल वाला जो वो कदरे देर से पहुंचता है, तो वो अभी कुछ वक्त पहले उधमपुर डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके जम्मू की तरफ बढ़ रहा है, और 1807 यात्री इसमें सवार है 44 गाड़ियों में। तो कुल मिलाकर जो ट्रैफिक रहा हाईवे पर बारिशों के बावजूद वो बिल्कुल बेहतर रहा, ठीक रहा। इससे पहले आज सुबह ही जो पंथा चौक से जो वहां पर रात को कयाम कराया जाता है, क्योंकि ट्रैफिक पर रिस्ट्रिक्शन से रात के औकात में किस जगहों पर रोका जाता है, जो यात्री वापस आते हैं वो वापस कयाम करते हैं, जो इनके लिए लंगर लगाए गए हैं ठहरने के लिए, तो वहां से भी 622 यात्री, 24 गाड़ियां जो थी उन्हें भी आज सुबह करीबन 10:30-11 बजे के आसपास यहां से क्रॉस करके उधमपुर डिस्ट्रिक्ट यानी जम्मू की तरफ रवाना किया गया। मजबूती तौर पर सुबह से बारिशें हुई और दोपहर 12 बजे तक, 12:30 बजे तक ये सिलसिला जारी रहा। अलबत्ता इस वक्त बादल छाए हुए हैं और बारिशें थमी हुई है। अलबत्ता अब जो असली जो वो जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई, तो उसका जो आइंदा दिख रहा है कि कल से उसका असर ज्यादा होगा, ज्यादा बारिशों की उम्मीदें हैं, खासकर चिनाब वैली के इलाकों में भी हाईवे इसमें खास तौर रहता है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे अगरचे आज ठीक रहा, लेकिन अगर हम बात करेंगे NH44 जो हमारा है ये ठीक रहा, जबकि बटोत डोडा और किश्तवाड़ को जोड़ने वाला 110 किलोमीटर लंबा NH244 उसे बोलते हैं, नेशनल हाईवे 24, उस पर स्लाइडिंग हुई आज सुबह करीबन 9:30-9 बजे। एक बस आई उसकी जद में, बहुत भारी पत्थरों की जद में, जिसमें 2 अफराद की मौत वाका हुई है और करीबन 6 जख्मी हुए हैं। जबकि बहुत सारी कारें भी उन बोल्डरों की जद में आ गई, लेकिन ये ऊपर वाले का रहम था।
0: आपसे ये दुखद खबर सामने आई, लेकिन आप ये जानना चाहेंगे कि ये तो यात्री बिल्कुल नहीं थे, ये

0: आम लोग।
1: ना ये आम, मतलब मैं ये NH-244
0: बिल्कुल
1: की बात
0: जी
1: कर
0: जी
1: रहा हूँ,
0: जी
1: यानी कहने का मतलब कि इस इलाके में मौसमी जो
0: जी जी
1: सूरताल है
0: बिल्कुल।
1: आज सुबह से ही खराब होना शुरू हुई है, बारिशें हुई है। अलबत्ता हाईवे पर इसका असर नहीं रहा,
0: बिल्कुल
1: लेकिन बुश बाकी इलाकों पर रहा। तो इस वक्त हाईवे का जो ये कश्मीर से ट्रैफिक जो वापस जा रहा था दर्शन के बाद, जो श्री अमरनाथ यात्री
0: जी
1: वापस जा
0: जी
1: रहे थे, वो बिल्कुल जम्मू पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं कुछ काफले,
0: जी
1: और
0: जी
1: अभी जो बालतल वाला है वो भी पहुंचने वाला है। तो फिलहाल मौसम अब आलूद हो, रोड
0: जी
1: ट्रैफिक
0: जी
1: जो है, जो दोनों तरफ का LMVs ट्रैफिक को अलाउ किया गया है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर इज गोइंग ऑन, जबकि ट्रक्स को आज जम्मू से कश्मीर की तरफ जो ट्रक है, टैंकर है, गैस वगैरह लेकर वो गाड़ियां कश्मीर की
0: जी
1: तरफ आ रही है, और
0: जी
1: मौसम
0: जी
1: बिल्कुल खुशगवार है
0: जी
1: इस।
0: तस्किन साहब, क्या अभी भी कोई यात्री रास्ते में रुके हुए हैं या तकरीबन सभी यात्री जो है वो बहिफाजत घर पहुंच चुके हैं?
1: कश्मीर से जो वापस आए वो बहफाजत पहुंच चुके हैं, लेकिन 19 तारीख के 18 तारीख के 2 बजे बाद से जो मतलब ट्रैफिक रोका गया है, यानी शनिचर हफ्ते के
0: जी
1: रोज
0: जी
1: 2 बजे के बाद जो चंद्रकूट में करीबन 1,000 से जायद यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो वहां पर रोके गए हैं, उनका ट्रैफिक वहीं रुका हुआ है, क्योंकि उन्हें अब ये मतलब जब तक मौसमी एडवाइजरी है, क्योंकि मौसम खराब रहने की आइंदा 1-2 दिन तक 3 दिन तक आशंका है, उम्मीद है कि ये खराब रहेगा, तो उस वजह से उनको रोके रखा गया। करीबन 1,000 से ज्यादा यात्री होंगे रामबन डिस्ट्रिक्ट में
0: जी
1: जिनको
0: जी
1: रोका गया है, और उनके लिए खाने पीने का आला इंतजाम है, रहने का आला इंतजाम है, यात्री निवास में 5,000 लोगों को ठहरने की जगह है, वहां पर उनको ठहराया गया है।
0: ये
1: तो
0: बहुत
1: फिलहाल
0: खुशायन बात है, बिल्कुल
1: तो उनको जैसे ये मतलब हाई ये जो शुरू हो जाएंगे दोबारा, जो यात्रा का रूट जो दोबारा खोल दिया जाएगा श्रद्धालुओं के लिए, तो उस वक्त इनको प्रायोरिटी पर यहाँ से रवाना किया
0: जी
1: जाएगा।
0: जी अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि यात्री कैसा महसूस कर रहे हैं मौसम के मिजाज के हवाले से, उनकी क्या कैफियत है?
1: बिल्कुल, हमने परसों ये जब बंद हुआ था उसके अगले दिन इतवार को, कल, हाँ कल सुबह तो बात की थी, जो चंद्रकूट में ठहरे यात्री बहुत खुश हैं, क्योंकि एक तो तमिलनाडु का था, वो बोलता हमारे उधर बहुत ज्यादा गर्मी का आजकल जोर है, तो यहाँ आकर वो बड़ा मतलब बहुत खुशी महसूस कर रहे थे।
0: बिल्कुल
1: कई खवातीन ने बात की, कहीं जो नौजवान थे, लड़कियां थी, उन्होंने बात की, तो सभी का एक ही यही है कि एक तो वो जो इंतजाम है उनसे बहुत खुश है, उनके घर जैसा महसूस हो रहा है
0: बिल्कुल
1: माहौल उनको
0: बिल्कुल
1: जम्मू कश्मीर में, और पब्लिक का जो कुछ वापस भी आए तो उनका यही कहना कि जिस कश्मीरी से या जिस लोगों से हमें वास्ता पड़ा कश्मीर में या जम्मू में, बहुत हमें मतलब सपोर्ट मिला उनसे, बहुत प्यार मिला, तो
0: जी
1: उससे
0: जी
1: वो बहुत मुतासिर है। तो मौसम से तो जाहिर है कि मुतासिर है ही, बहुत खुशगवार मौसम है। अगर बाकी इलाकों की मतलब बात करें, जो वो टेम्परेचर ज्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन यहाँ
0: जी
1: कहेंगे तो पिछले इतने दिन जो गुजर गए तो बेहतर दिनों, जो मौसम बेहतर ही रहा, खुशगवार ही रहा हमारे इस रामबन बनिहाल सेक्टर में।
0: जी जी बहुत शुक्रिया तस्कीन साहब हमसे जुड़ने के लिए और हम तक ये तफसीलात पहुंचाने के लिए, बहुत शुक्रिया।
1: जी बहुत
0: तो श्रोताओं, ये थे मोहम्मद तस्कीन साहब रामबन से। हम और भी जो हमारे संवाददाता हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में, तो तब तक आप भक्ति संगीत सुनते रहिए।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण। जैसा कि हम बता चुके हैं कि हम अपने लगातार अपने संवाददाताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमने जम्मू के संवाददाता से बात की, जावेद महराब साहब से, रामबन हम मोहम्मद तस्कीन से बात की, और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनंतनाग से एस तारिक साहब। तो इनसे हम मौसमी सूरत हाल और दीगर जो अपडेट्स हैं वो लेने की कोशिश करेंगे। एस तारिक साहब, हम आपका स्वागत करते हैं इस विशेष प्रसारण में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता जी।
0: जी जी।
1: तो मैं अपनी पहलगाम की कुछ जो बातें करूं तो इसमें पहलगाम के अमरेश्वरी पर्वतों और आसपास के क्षेत्रों में आज आकाश उबरालोद है। मौसमी विभाग के अनुमान आज भी कहीं मध्यम तो कहीं तेज वर्षा होने की संभावना भी है, जबकि रात भर जो पहलगाम और उसके नवाही इलाके हैं पूरी यात्रा मुबारक तक बारिशें हो रही थी, लेकिन सुबह बिल्कुल मौसम ठीक था। लेकिन इस वक्त भी उबरालोद मौसम की इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए जो श्री अमरनाथ जी यात्रा के जो इंतजामिया है को यात्रा की सुरक्षा और कुशलता के मद्देनजर आज लगातार दूसरे दिन भी आरजी रूप से ये जो यात्रा है मुअत्तल करनी पड़ी। ये निर्णय यात्रा प्रशासन ने भारतीय मौसम विभाग की पेशगोई के आधार पर किया है। इसके तहत आज भी नुनवन चंदनवारी आधार शोरू से किसी भी श्रद्धालु को पवित्र गुफा के ओर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि हम बालतल की जब बात करें तो बालतल से रवाना होने वाले 4000 के करीब जो भगत थे वो पवित्र गुफा में दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। वो यात्री है जो जम्मू से नहीं बल्कि बायर या श्रीनगर में पहले से ही मौजूद थे, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तो वहाँ जो थोड़ा सा प्रशासन को लगा कि रास्ता ठीक है तो उनको
0: इजाजत मिल गई है।
1: इसी तरह पहलगाम क्षेत्र से
0: लेकिन यहाँ पे रोकना चाहेंगे, कहीं इनको तो कोई कठिनाइयों का सामना तो नहीं करना पड़ा जो ये रुके हुए यात्री थे यहाँ पे या जो बायर यहाँ पे पहुँच चुके हैं?
1: मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो बालतल का रास्ता है ये बहुत छोटा सा रास्ता है, ज्यादा दूर नहीं है, 14 किलोमीटर का रास्ता है और ये इतना पहाड़ी सिलसिला नहीं है जितना पहलगाम क्षेत्र का एरिया है। पहलगाम क्षेत्र में इस वक्त भी जो हमें रिपोर्ट मिली है वहाँ फिसलन मौजूद थी। उस चीज को देख के जो बीआरओ है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, वो बिल्कुल बुरा या पूरे मार्ग को देख रेख कर रहे हैं। उनको जब लगेगा कि जो रास्ता है चलने के लिए जो पदयात्रा के लिए बिल्कुल मुनासिब है तो तब वो भी आगे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। फिलहाल ये जो वहाँ से जो बालतल की बात है तो वहाँ रास्ता बिल्कुल ठीक था क्योंकि लोग वहाँ चले गए, उन्होंने दर्शन किए हैं और वो वापसी का रास्ता भी इसी जाने इख्तियार कर चुके हैं और प्रशासन उसको बारी बीनी से देख रहे हैं कि कहीं भी कोई

0: प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जब 100% वहाँ उन्हें लगा कि नहीं रास्ता ठीक है, तब जाके उन्हें इजाजत मिली है। तो इसी प्रकार से जब पहलगाम से भी ये चीजें देखी गई है, तो वहाँ प्रशासन को लगा बोस्निया की जो जो उनकी जो पेशेंट हुई थी उसके मुताबिक बिल्कुल वही कुछ था जो रास्ते में फिसलन वगैरह थी, तो उनको बिल्कुल इजाजत नहीं मिली है। इस वक्त भी जो हम देखेंगे तो नुनवर आधार शिविर में तकरीबन 8,000 के करीब लोग बैठे हुए हैं, अपने अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, मौसम का वेट कर रहे हैं कि कब प्रशासन इन चीज को इजाजत दे और वो अपनी जो दर्शन है वो पूरा करें, लेकिन उन्हें अभी इजाजत नहीं है। लेकिन उनके लिए पूरे इंतजाम रखे गए हैं। प्रशासन का कहना है कि जैसे ही मौसम में सुधार आएगा और यात्रा मार्ग को सुरक्षित करार दिया जाएगा, श्री अमरनाथ जी यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा।
1: अगर अगर यात्रियों की बात करें तो मौसम के हवाले से क्या वो खुशी महसूस कर रहे हैं कुछ हद तक, या फिर उनका जो इंतजार है उस हवाले से वो कुछ खफा है?
0: ये मिला जुला मामला है। जब वो प्रशासन के द्वारा इंतजाम को देखते हैं जो उनको मुख्तलिफ आधार शिविरों में देखने को मिलता है, तो वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये जो उनके जो आस्था होती है, आस्था के तर्ज पे वो चाहते हैं कि सबसे ज्यादा से ज्यादा हम करीब से करीब तर और जल्दी से जल्दी हम अपने बाबा के द्वार पहुँच कर वहाँ दर्शन करें, वहाँ धार्मिक की जो भी हमारी इबादतें हैं वो पूरी हो जाए, तो वो चीजें हैं। लेकिन इस वक्त जो मौसम का हाल है, मौसम बेहतर होते जा रहा है, मुझे लगता है एक दो दिन में शायद इस चीज की इजाजत मिलेगी कि फिर से दोबारा यात्रा
1: तारिक साहब, आपने मौसम विज्ञान विभाग जो है उनसे तो आपने जरूर रब्ता किया होगा, तो तकरीबन क्या लग रहा है कि कब तक यात्रा जो है उसके फिर से शुरू होने के इम्कान है?
0: बिल्कुल, ये अभी दो दिन जो कल हम बात कर रहे थे, जो मौसम विभाग के जो हेड है वो कल भी बयान दे रहे थे इस हवाले से कि दो दिन तक ये अभी मौसम ऐसा ही है, तो क्योंकि लैंडस्लाइड्स का खतरा है, क्योंकि अभी वो ऐसा वो कुछ नहीं हुआ है लेकिन खतरा है, हम किसी रिस्क को नहीं उठा सकते हैं कि यात्रियों की किसी भी रिस्क को हम नहीं उठा सकते। अदरवाइज मैं जब जानता हूँ इस रास्ते को, मैं पूरी तरह से जानता हूँ, मैं वाकिफ हूँ उस रास्ते से, अगर आज भी यात्री जाना चाहेंगे वो जा सकते हैं, लेकिन वो एडवांस उनकी हिफाजत के लिए ऐसा किया गया है कि कहीं लैंडस्लाइड्स ना हो, क्योंकि मौसमियात ने ऐसा किया है। तो दो दिन हम शायद अभी रुकेंगे, और इसके बगैर भी जो मैं मौसम की आपको बता कि मौसमियात के लेवल पे जो हुआ है कि अभी बहुत सारे जगहों पे, चाहे बानिहाल, जम्मू, बालटाल, पहलगाम, एक जो डॉपलर वेदर रडार लगाए गए हैं वो एडवांस ये आधुनिक प्रणाली बादल फटने या मूसलधार वर्षा, गरज चमक, ओले, वर्षती की और तेज हवाओं जैसे स्थानीय मौसम खतरात की बरवक पहचान करती है, और तभी जाके वो चेतावनी मिलती है और उसी के आधार पे यात्रियों की सुरक्षा को लेके यात्रा को आगे बढ़ने या ना बढ़ने की फैसले लिए जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि हर एक यात्री की जो जिंदगी है, उनका जो जीवन है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
0: फर्स्ट प्रायोरिटी इसी चीज को दी जा रही है कि किसी भी यात्री को कोई नुकसान ना पहुंचे।
1: जी जी, बहुत शुक्रिया तारिक साहब हमसे जुड़ने के लिए इस विशेष प्रसारण में, बहुत शुक्रिया। जी श्रोताओं, तो ये थे हमारे एस तारिक साहब जो अनंतनाग से हमसे जुड़े थे। हम इसके बाद गांदरबल और श्रीनगर से भी रिपोर्ट्स लेने की कोशिश करेंगे, तब तक आप एंजॉय कीजिए भक्ति संगीत।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना

0: श्रोता, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। मेरे साथ मैं हूं आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी। चूँकि जैसा कि हम अब इससे पहले भी बहुत से संवाददाताओं से बात कर चुके हैं, तो इस बीच हमारे साथ इस वक्त गांधरबल से रहीम रिजवान साहब जुड़ चुके हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। जी रहीम रिजवान साहब, हम आपका स्वागत करते हैं इस विशेष प्रसारण में।
1: बहुत बहुत स्वागत आपका भी।
0: जी, क्या सूरत हाल है गांधरबल के हवाले, वहाँ जो एरिया है वहाँ पे यात्रा के हवाले से, और मौसमी सूरत हाल खासकर उन हवाले से हमें अपडेट कीजिए।
1: सबसे पहले हम श्रोताओं को बालतल क्षेत्र के वातावरण एवं मौसम की स्थिति के बारे में विस्तार से सूचना साझा करते हैं। श्रोताओं, आज बालतल से पवित्र गुफा तक मौसम सुहाना है। आकाश पर बादल छाए हुए हैं, बीच में भारी वर्षा, कभी कभी हल्की वर्षा भी होती है। तो फिलहाल मौसम बिल्कुल खुशगवार है। अलबत्ता मौसम विभाग के अनुसार घाटी में जो खराब मौसम रहने की पेशनगोई की गई है, उसी पेशनगोई के मुताबिक सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई। यात्रा को जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से ही स्थगित करने का निर्णय प्रशासन ने इसलिए लिया क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि बादल मुखी मार्ग से पवित्र गुफा तक जो ऊंचे पर्वतों के बीच 14 किलोमीटर का रास्ता है वो कठिन माना जाता है। इस पर वर्षा के दौरान सफर करना यात्रियों के लिए बेहद दुर्गम माना जाता है, इसीलिए प्रशासन ने यात्रा को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया। मौसम में बेहतरी आते ही यात्रियों को बीते दिनों की तरह फिर से पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी। अलबत्ता बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक प्रशासन ने यात्रियों की सहायता के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं या सुरक्षा के जो कड़े प्रबंध किए गए हैं उनमें किसी तरह की कमी देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि व्यवस्थाओं में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है।

0: आयन बात है रिजवान साहब
1: बिल्कुल
0: जी।
1: इसी तरह ट्रांजिट कम शादीपुरा एवं ट्रांजिट कम मनगांव में यात्रियों के लिए जो व्यवस्थाएं रखी गई हैं उसमें भी आए रोज बेहतरी लाई जा रही है
0: जी
1: एवं
0: जी
1: यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। ट्रांजिट कम मनगांव में सुपर इंटेंडेंट ऑफ पुलिस आबिद रशीद मीर एवं कैंप नोडल अफसर यानी ACR गांधरबल डॉक्टर शेख सलाहुद्दीन जो ट्रांजिट कम मनगांव एवं श्रीनगर कारगिल राजमार्ग का बाजाब्ता तौर निगरानी कर रहे हैं। 24 घंटे वो खुद यात्रियों की सहायता के लिए खड़े रहते हैं एवं सिविल

0: सुरक्षा कर्मियों से बार बार रिपोर्ट तलब करते हैं। हालांकि आबिद रशीद मीर और डॉक्टर शेख सलाउद्दीन न सिर्फ श्रीनगर कारगिल राजमार्ग या यात्रियों की निगरानी करते हैं बल्कि ट्रांजिट कैंप मणिगांव में जो जिला प्रशासन ने सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं उनका भी मुआयना करते रहते हैं। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों को राउंड द क्लॉक चौबंद रखा गया है ताकि तीर्थ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। हम बार बार अपने श्रोताओं को इस सूचना से साझा करते हैं कि शाम 5 बजे के बाद चाहे जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से या बालतल बेस कैंप से जो भी यात्री ट्रांजिट कैंप शादीपुरा या ट्रांजिट कैंप मणिगांव पहुंचते हैं उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है और हर 5 बजे के बाद उन्हें इन्हीं दोनों ट्रांजिट कैंपों में रात भर कयाम करना पड़ता है और रात्रि विश्राम के बाद इन यात्रियों को सुबह सवेरे अपने अपने मंजिल मकसूद की तरफ जाने की अनुमति दी जाती है। और इन दोनों ट्रांजिट कैंपों में प्रशासन ने यात्रियों के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी है जिसको लेकर यात्री संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इस तरह अगर हम बात करेंगे तो श्रीनगर कारगिल राजमार्ग के साथ साथ जो बालतल मुखी मार्ग है वहाँ बीते दिनों जो यात्रा है वो सुखद तरीके पर संपूर्ण थी तो जारी थी, लेकिन आज अगर हम बात करेंगे तो आज यात्रा जम्मू से ही स्थगित कर दी गई। इसीलिए किसी भी यात्री को इस कारगिल राजमार्ग पर आगे बढ़ने की इजाजत नहीं।
1: लेकिन यहाँ पर पूछना चाहेंगे कि ये जो मणिगांव और जो शादीपुरा के जो ट्रांजिट कैंप है क्या वहाँ पर कुछ यात्री रुके हुए हैं और क्या उनको वहां पे इजाजत मिलती है फिर यात्रा के लिए?
0: बिल्कुल, इन दोनों ट्रांजिट कैंपों में यात्री रुकते हैं और हम ये भी आपको से शेयर करना चाहते हैं कि अगर पर्यटक भी यहाँ पहुंचे तो वो भी इन दोनों ट्रांजिट कैंपों में रुकते हैं। तो फिलहाल जो यहाँ के अफसर हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है कि इन यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर खासकर बालतल बेस कैंप की तरफ जाने की अनुमति दी जाती है और जो बालतल बेस कैंप में यात्री रुके हैं जो पहले ही आए थे यहाँ पे पहले ही पहुंचे थे

0: बजे तक 3,120 यात्री शिवलिंगम का दर्शन करके पवित्र गुफा से वापस बालतल पहुंचे, जिनमें 2,040 पुरुष, 926 महिलाएं, 57 बालक बालिका, 5 साधु, 2 साधियां एवं 90 सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। और इन यात्रियों ने शिवलिंगम का दर्शन किया और वापस सुरक्षित बालतल बेस कैंप पहुंचे। रात्रि विश्राम के बाद अगस्त्य इन यात्रियों को बालतल बेस कैंप से सुबह सवेरे जम्मू भगवती नगर बेस कैंप की तरफ जाने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन फिलहाल कल से किसी भी यात्री को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। अभी जो भी यात्री जहां पे है, प्रशासन के द्वारा उनसे यही बार बार सूचना दी जाती है कि वो उसी मकाम पे विश्राम करें, चाहे वो बालतल बेस कैंप में है, ट्रांजिट कैंप मणिगांव में है, या ट्रांजिट कैंप शादीपोरा में है। इसके बरक्स अगर कोई भी यात्री जाना चाहते हैं, यानी जम्मू भगवती बेस कैंप की तरफ, तो उन्हें बाजबता तौर अनुमति दी जाती है।
1: जी, बहुत शुक्रिया रहीम रिजवान साहब हमसे जुड़ने के। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि मौसम के हवाले से अगर आपने यात्रियों से बात की तो क्या लग रहा है, क्या वो कुछ, चूंकि टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका है पहले से, तो क्या कुछ संतुष्ट वो नजर आ रहे हैं इस हवाले से?
0: बिल्कुल, यहाँ का वातावरण, यहाँ का मौसम देखकर वो झूम उठते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम अजीब सा है। बीच में भारी वर्षा होती है और बीच बीच में हल्की हल्की वर्षा होती है और धूप भी खिलती है। खासकर अगर हम बालतल क्षेत्र की बात करेंगे तो वहाँ मौसम बिल्कुल सुहाना आज बना हुआ है। तो जो बाहर वो अपने इलाके में उनके जो गर्मी, शिद्दत की गर्मी पड़ती है, उससे उन्हें छुटकारा मिले और वो इस मौसम का आनंद लेते हुए गुफा की ओर रवाना हो रहे हैं और सुरक्षित वापस पहुंच रहे हैं। और उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि यहाँ का वातावरण, यहाँ का मौसम देखकर वो इतना खुश होते हैं कि वाकई कहते हैं कि ये स्वर्ग है, ये जन्नत बेनजीर है, और दिल नहीं मानता है उनको वापस जाने के लिए। लेकिन अब यात्रा तो है, मजबूरी है, तो जाना वापस तो जरूर है। लेकिन उन्होंने इतना कहा कि ये खासकर अगर हम ट्रांजिट कैंप मणिगांव की बात करेंगे तो शाम के वक्त जो ही वो ट्रांजिट कैंप मणिगांव में बाहर देखते हैं नाले सिंध का नजारा और ठंडी ठंडी हवाएं, तो वो बिल्कुल झूम उठते हैं ये नजारा देखकर। वो कहते हैं कि ये वाकई जन्नत बेनजीर है, दिल नहीं मानता है कि वो यहाँ से वापस जाएं, तो इसलिए वो बिल्कुल खुश हुए हैं।
1: जी, बिल्कुल। और ऐसे में जो उनका इंतजार है वो भी कुछ आसान जो है वो महसूस होता होगा। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब हमसे जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, ये थे गांधरबल से रहीम रिजवान साहब। हम श्रीनगर के संवाददाता से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे कुछ ही समय में, हमारे जो इमरान नायकू साहब हैं। तब तक आप भक्ति संगीत सुनते रहिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। FM बालतल 103.7 मेगाहर्स, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्स, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज ऑन AIR की आराधना चैनल पर। इसके अलावा आप हमें DTH के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, अभी अभी हमें ताज़ा तरीन जो है दर्शन रिपोर्ट मौसूल हुआ है, उसके अनुसार आज कुल 5,860 यात्रियों ने जो है दर्शन किए हैं पवित्र गुफा के, जिनमें 3,793 पुरुष, 1,803 महिलाएं, 102 बालक, 15 साधु, 4 साध्वियां और 143 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। आप बने रहिए हम

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। श्रोताओं, अभी हमारे संवाददाता जो श्रीनगर से हैं, इमरान नायकू साहब, वो हमसे जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मौसमी सूरत हाल और क्या अपडेट्स है यात्रा के हवाले से। इमरान साहब, हम आपका स्वागत करते हैं इस विशेष प्रसारण में।
1: जी, थैंक यू सो मच।
0: जी इमरान साहब, क्या सूरत हाल है, खासकर मौसम की अगर बात करें, चूंकि हम भी खुद स्टूडियो में बैठे हैं, तो बाहर की क्या सूरत हाल है अभी?
1: देखिए, आज सुबह से ही हमने देखा कि श्रीनगर सिटी में तकरीबन 2-3 घंटे तक लगातार मूसलाधार बारिशें हुई, यानी कि हैवी रेनफॉल हुई। और जैसे कि पहले से ही जो मौसम विभाग है, जो वेदर डिपार्टमेंट है, उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि 20 जुलाई से 23 जुलाई तक जम्मू और कश्मीर के कुछ जो इलाके हैं या जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे तेज बारिश होंगी। और इस तरीके से हमने देखा कि कल भी और आज सुबह भी खासकर श्रीनगर शहर में तेज बारिशें हुई, मूसलाधार बारिशें हुई, जिसकी वजह से शहर में जो नॉर्मल लाइफ है वो थोड़ी सी डिसरप्ट हुई, थोड़ा सा उस पे इफेक्ट पड़ा। लेकिन ओवरऑल इस वक्त दोपहर के बाद हमने देखा कि मौसम में बेहतरी आई और इस वक्त श्रीनगर में मौसम बिल्कुल साजगार है और हल्की सी इस वक्त धूप भी निकली हुई है, लेकिन बादल भी छाए हुए, अलबत्ता बारिश नहीं हो रही है। जैसे मैंने कहा कि सुबह कई घंटों तक तेज बारिशें हुई और जिसकी वजह से बहुत सारे इलाकों में वाटर लॉगिंग भी हुई। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो श्रीनगर का पांथा चौक ट्रांजिट कैंप है, यहाँ पे जैसे हमने सुबह भी अपडेट किया था कि पांथा चौक ट्रांजिट कैंप में या उस इलाके में किसी तरह की कोई वाटर लॉगिंग नहीं हुई और न ही नॉर्मल लाइफ वहां डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से एक तो ये कि वो एक नेशनल हाईवे है वहां से, दूसरा ये कि प्रशासन की तरफ से पहले से ही वहां उस तरीके के जो सिस्टम है या मैकेनिज्म है वो इंश्योर किया गया है ताकि आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो और खासकर जो अमरनाथ जी यात्री जो ट्रांजिट कैप में है उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े या कोई किसी किस्म की उनको परेशानी ना हो। और वहां पहले से ही एक फुल फ्लेज्ड जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बनाया गया था, वो कई साल पहले श्रीनगर स्मार्ट सिटी के जरिए से, जिसकी वजह से वहाँ कोई वाटर लॉगिंग नहीं होती और ना ही वहाँ पानी अंदर दाखिल होता है। और इसके अलावा जो बेसिक बाकी फैसिलिटीज है, जैसा कि रोड फैसिलिटी या बाकी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, इसके अलावा जो खाने पीने की जो सुविधाएं हैं, लंगर है, कम्युनिटी किचन है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, जितनी भी बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ जिसको कहा जाता है, वो पहले से ही अमरनाथ जी यात्रा के इस ट्रांजिट कैंप में

0: सरकार की तरफ से अमरनाथ जी यात्रियों के लिए रखी गई है। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इस अमरनाथ जी यात्रा के अभी तक, जो कि अभी मौसम की वजह से आज भी यात्रा सस्पेंड रही, लेकिन जो यात्री अभी तक अमरनाथ जी गुफा का, पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं, और जितने यात्रियों से हमारी अभी तक बात हुई, सबका कहना है कि उनकी एक बेहतरीन यात्रा रही है। और खासकर जो इंतजामिया या गवर्नमेंट की तरफ से या प्रशासन की तरफ से उनको यहाँ इंतजाम रखे गए, वो चाहे यहाँ की डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन हो, श्राइन बोर्ड की हो, या पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, या जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन,
1: क्या ये जो ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के या जो श्राइन बोर्ड वगैरह, क्या वो खुद इन ट्रांजिट कैंप्स का दौरा करते हैं, जायजा लेते हैं वहाँ के इंतजाम का?
0: देखिए, आपको ये पता होगा कि जो एलजी मनोहर सिन्हा साहब हैं वो खुद पूरी यात्रा को मॉनिटर करते हैं, और सीएम उमर अब्दुल्ला साहब भी पूरी यात्रा को खुद मॉनिटर करते हैं, और इसलिए खासकर एलजी साहब की तरफ से क्लियर कट डायरेक्शंस है, क्योंकि उन्होंने पालतल का विजिट किया, उन्होंने नुनवान बेस कैंप का विजिट किया, और पिछले हफ्ते वो यहाँ श्रीनगर के इस पांता चौक ट्रांजिट कैंप में भी उन्होंने विजिट किया था, और हर विजिट में वो क्लियर कट डायरेक्शन ऑफिशियल्स को दे चुके हैं कि वो ऑन स्पॉट वहां पे जाए और यात्रियों से बात करें और अरेंजमेंट्स का रिव्यू ले। और हम देख रहे हैं कि चाहे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर हो, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर हो, एसएसपी श्रीनगर हो, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के जो आला अधिकारी या ऑफिशियल्स हो, या जितने भी कंसर्न महकमों के जो ऑफिसर्स है, वो लगातार यहाँ विजिट कर रहे हैं और यात्रियों से बात कर रहे हैं और उनसे उनका फीडबैक हासिल करें। इन द मीन टाइम हम देख रहे हैं कि यहाँ श्रीनगर के पांता चौक ट्रांजिट कैप में गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है मुख्तलिफ महकमों के, वो ऑलरेडी यहाँ पे डिजिग्नेट किए गए हैं, जैसे पुलिस ऑफिशियल्स ने अपना एक अलग ऑफिसर मुकरर किया है, इसी तरीके से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स जो है वो मुकरर किए गए हैं, ताकि अमरनाथ जी यात्रियों को अगर कोई उनको की कोई परेशानी हो या कोई दिक्कत हो तो वो एज सून एज पॉसिबल उसको रिजॉल्व करें। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि यात्रा को लेके यात्रियों की कोई भी शिकायत अरेंजमेंट्स को लेके सामने नहीं आई है, लेकिन कुल मिला के हम यूं देखें कि या यूं कहें कि अमरनाथ जी यात्रियों की इस यात्रा को बेहतर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार या जम्मू कश्मीर की जो प्रशासन है, इनकी तरफ से हर तरह की जो सुविधा है वो यात्रियों को दी जा रही है।
1: मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो मौसम विज्ञान विभाग जो है उनकी आने वाले वक्त के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, ताजा तरीन जो हम कहेंगे?
0: देखिए, आज हमारी मौसम विभाग से बात हुई है, उनका यही कहना है कि 23 तारीख तक, 23 जुलाई तक थोड़ा सा मौसम जो है जम्मू के, खासकर जम्मू का जो पीर पंचाल रीजन है या बाकी जो रीजन है वहां से, वो वहां बारिशें होंगी। कश्मीर में भी थोड़ी सी हैवी रेनफॉल तो नहीं, अलबत्ता मॉडरेट रेनफॉल की पेशेंगोई की गई है, कुछ एडवाइजरी भी उनकी तरफ से दी गई है, लेकिन ओवरऑल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम जल्द से जल्द बेहतर हो और दोबारा से यात्री जो है वो पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हो जाए, लेकिन उम्मीद यही करें। अलबत्ता इस वक्त जो श्रीनगर में मौसम है वो बिल्कुल साजगार है, याद होगा आपको कल भी हमने अपडेट किया था कि मॉर्निंग में श्रीनगर में लगभग दो से डेढ़ घंटे तक बारिश हुई, लेकिन फिर पूरे दिन मौसम साफ रहा और आज भी वही स्थिति यहाँ पर है।
1: जी, अगर हम आम लोगों की बात करें तो कैसा व्यवहार है उनका यात्रियों के साथ, क्योंकि अभी जो है वो ट्रांजिट कैंप्स में ही रुके होंगे यात्री, तो आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार?
0: बिल्कुल, देखिए हर साल हम देखते हैं कि जैसे हम अपनी रिपोर्ट पे भी बार बार कहते हैं कि ये यात्रा बहुत एक कम्प्रहेंसिव चीज हमें सिखाती है और इसका एक बहुत बड़ा मैसेज भी है, पैगाम भी है। ये सिर्फ ये नहीं कि ये यात्रा बाहर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग यहाँ पे आए अमरनाथ जी यात्रा के लिए और अपनी जो मजहबी रस्म है वो अदा करें, बल्कि इसके बगैर भी हम देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए यात्री यहाँ के मकामी या यहाँ के लोकल से बात करते हैं और एक दूसरे का जो कल्चर है वो शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ जो उनकी जो बातें हैं वो शेयर करने के बाद वो बहुत सारी चीजों को एक्सचेंज ऑफ जो कल्चरल इंटीग्रेशन है वो हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कश्मीर का जो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम है, जो मुख्तलिफ यात्री पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं और वो उसका भी एक्सपीरियंस करें और उसको भी एक्सप्लोर किया यहाँ पे जा रहा है। और जैसे हम यात्रियों से बात करते हैं और उनसे हम यहाँ

0: यहाँ की हॉस्पिटलिटी अपार्ट फ्रॉम द यात्री, ये जो या अपार्ट फ्रॉम द यात्रा, यात्रा के बगैर हम यहाँ की हॉस्पिटलिटी के बारे में पूछते हैं, यहाँ के लोगों के व्यवहार के बारे में पूछते हैं, यहाँ के जो पुणे वाले हैं, यहाँ के जो सर्विस प्रोवाइडर से या आम लोग हैं जो यात्रियों से मिलते हैं, तो कुल मिला के यात्री जो है मुसलसल हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव फीडबैक कश्मीर को लेके देखते हैं, और उनका यही मानना है कि कश्मीर तो जन्नत का है ही है, लेकिन यहाँ की जो मेहमान नवाजी है एब्सोल्यूट यूनिक है। यहाँ के लोगों का जो तौर तरीका, उठना बैठना या यात्रियों के साथ जो उनका बिहेवियर है, तो वही सबसे अच्छी और खूबसूरत चीज इस यात्रा को बनाती है कि एक प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारे और वो कम्युनल हार्मनी जिसको कहा जाता है, मजहबी हम आहंगी, वो इस यात्रा से हमें मिलती है और वही ये यात्रा हमें उसका एक जो है सबूत हमें देती है।
1: जी जी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए श्रीनगर से। तो ये थे हमारे संवाददाता इमरान नायकू साहब श्रीनगर से।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिए।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स न्यूज ऑन एआईआर की अराधना चैनल पर। इसके अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, कहते हैं कि प्रेम वो ताकत है जो इंसान को इंसान से और इंसान को ईश्वर से जोड़ती है, और शिव जी की शिक्षा भी यही संदेश देती है कि धर्म, जाति, भाषा और इलाके से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करें। श्रोताओं, अभी अभी हमें ताज़ा जो है दर्शन रिपोर्ट भी मौसूल हुआ है, वो भी आप तक पहुँचाएँगे। उससे पहले आप भक्ति संगीत समाप्त करें।

पुरुष 1,863, महिलाएं 160, बालक 18, साधु 4, साध्वियां और 152 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। तो आप सुनते रहिए हमारा ये विशेष प्रसारण, और जो ही हम तक कोई भी महत्वपूर्ण सूचना पहुंचती है, हम लगातार कोशिश करते हैं कि वो आप तक पहुंचाते रहें। फिलहाल मौसम का जो हाल है, मौसम के जो मिजाज हैं, वो कुछ रूठे रूठा से हमसे महसूस होता है, लेकिन ये भी सही बात है कि मौसम के इस मिजाज की वजह से जो है गर्मी में कुछ हद तक कमी आई है, और उससे भी जो है सबको बहुत हद तक राहत मिली होगी। और ये भी जानते हैं हम कि आपको दर्शन का इंतज़ार होगा, और वो इंतज़ार ज़रा सा लंबा होता जा रहा है, और हम नहीं चाहते कि शिव जी के दर्शन करने में आपको ज़रा भी इंतज़ार करना पड़े। प्रार्थना है कि बहुत जल्द जो है मौसम बेहतर हो, और आप जो है आपको शिव जी के दर्शन प्राप्त हो। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए इस विशेष प्रसारण में, और आप सुनते रहिए भक्ति संगीत।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी शिव भक्तों का बाबा बर्फानी जी के इस पावन पवित्र अद्भुत धाम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी शिव भक्त बड़े ही पुण्य कर्मी हैं, जो आप सभी आज प्रातःकालीन आरती के दर्शन कर रहे हैं। MH1 चैनल के माध्यम से जो भक्तजन देश एवं विदेश में बाबा जी की इस पावन आरती की दर्शन कर रहे हैं, वह भी बड़े ही पुण्यकर्मी हैं। प्रिय बंधुओं, ये जो धाम है, ये त्याग का प्रतीक है। इस धाम में जब बाबा बर्फानी जी ने मां पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, तो उससे पहले उन्होंने अपने मार्ग में अपनी सभी जो जैसे अपने गण, अपना श्रृंगार इत्यादि सभी का अपने मार्ग में ही त्याग कर दिया। इसलिए प्रिय बंधुओं, आप भी इस त्याग को अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि ये जो त्याग है, इस त्याग से ही आप बाबा बर्फानी से जो मिल सकते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमारे शास्त्र कहते हैं, ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, पर भाग्योपजीवीषु खड़ एते नित्य दुखिता।

जो लोग दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपने इस धाम में आकर कुछ सीखना है तो यही सीखना है, हमने त्याग क्या करना है, हमने अपने अंदर की ईर्ष्या का त्याग करना है, घृणा का त्याग करना है, हमें अपने जीवन में संतोष धारण करना है। ईर्षि घृणी ना संतुष्टा क्रोधो नित्य शंकिता, और अपने अंदर के अपने भीतर के क्रोध का त्याग करना है। जो क्रोध है, यही जो क्रोध है, ये हमारे और बाबा के बीच में जो दीवार है, इसलिए इस क्रोध का त्याग करें। ईर्षि घृणी ना संतुष्टा क्रोधो नित्य शंकिता, और हर बात पर शंका जो है वो भी परमात्मा के साथ मिलन में एक वादा है, इसलिए हमें हर बात पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। ईर्षि घृणी ना संतुष्टा क्रोधो नित्य शंकिता पर भाग्योपजीवीषु, और हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने जो हम जीवन में हम कर्म करते हैं उनके आधार पर ही हमें अपने जीवन का जापन करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, इस धाम में हमें यही सीखना है, हमें ईर्ष्या करनी है तो अपनी अपने अंदर की बुराई से करनी है, घृणा करनी है तो अपने अंदर की बुराई से करनी है। हमें अगर संतोष हमारे अंदर नहीं है तो किस चीज का नहीं होना चाहिए, परमात्मा से प्रेम का हमें संतोष नहीं होना चाहिए। और घृणा करनी है तो बुराई से, क्रोध से। प्रिय बंधुओं, इन सभी बातों को अपने जीवन में धारण करते हुए आज प्रातःकालीन आरती में प्रवेश करते हैं। बोलिए शंकर।

आप सभी भक्तजन बाबा के पवित्र धाम में बैठे हैं। कहते हैं भोले बाबा स्तुतियों से भजनों से बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी भक्तजन आज भोले बाबा ने हमें अवसर दिया है तो दोनों हाथों से ताली का वादन करते हुए हंसते हुए मुस्कुराते हुए भोले बाबा के सुंदर भजन का ध्यान करेंगे। बोलिए।

0: शंकर भगवान की
1: जय।
0: धर्म के
1: जय हो,
0: अधर्म का
1: नाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भावना हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय हो,
0: मात पिता की
1: जय हो,
0: गुरु जनों की
1: जय हो,
0: सभी संतों की
1: जय हो,
0: सभी भक्तों की
1: जय हो,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय हो,
0: आज के आनंद की
1: जय हो,
0: भारत माता।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

प्रस्तुत है धनुष यज्ञ का कार्यक्रम, जहां बड़े बड़े योद्धा, राजा, सूर्यवीर, बाणासुर जैसे योद्धा धनुष को तोड़ने के लिए अपने अपने बल का प्रयोग करते हैं। उसी दरबार में श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ उपस्थित हैं। बारी बारी से सूर्यवीरों के प्रयास करने पर भी धनुष नहीं उठा। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपने गुरु का चरण छूते हुए प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। धनुष दो टूक हो जाता है। धनुष टूटने की आवाज सुनते ही परशुराम जी की तपस्या भंग होती है और उठकर जनक की सभा में पहुंचते हैं। परशुराम जी को गुस्से में देख भगवान राम जी हाथ जोड़ अपनी सारी बातें कुछ इस प्रकार बताते हैं।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

श्वेत वृषभ पर विराजेला, श्वेत वस्त्रों ने धारण करणारा, महादेव जी ने आनंद अपनारा, हे तेजस्विनी महागौरी देवी, हमने शुभ पदार्थों आप। महागौरी ये पार्वती देवी च एम कहवाय छे के एक समय महादेव जी पोताना आ अर्धांगना शक्तिनो परिहास विनोद मा करता काली श्यामा एम कहू। एथी आ देवीए उग्र तपश्चर्या दिव्य आराधना करीने अति गौर श्वेत वर्ण प्राप्त कर, एथी आ महागौरी कहवाया। महागौरी पार्वती जी तथा महादेव परमेश्वर के ये वाणी अने अर्थनी माफक संयोजित छे। इमने वाणी तथा अर्थनी प्राप्ति माटे महाकवि कालिदासे

हे अग्निदेव, ये भगवती लक्ष्मी जी ने हमारे माटे आप अहीं बुलाई आओ। हे लक्ष्मी जी, सुवर्ण जेवा मनोहर कांतिवाळा, सुवर्ण तथा रूपानी मालाओ धारण करनार, चंद्रनी जीवी प्रभा धारण करनार, सुवर्ण रूप लक्ष्मी ने प्रणाम। हे अग्निदेव, एमने अमारे त्यां जल्दी जल्दी लई आ।

हे भवानी गौरी, स्मशाननी चितानी भस्मनु आलेपन करणार महादेव, जेरनु विष्णु भोजन करणार दिगंबर, जटाधारी कंठे नागराज वासुकी ने हारना रूप में धारण करणार, हाथमा कपाल भिक्षा पात्र धारणार भगवान पशुपति महादेव जगदीश ने पदवी पाम्या, हा हा हा, खरेखर ये तो हे परमेश्वरी तमारा पाणी ग्रहण नी परिपाटी योजनानु फल। हे महादेवी, आप हमारा ऊपर प्रसन्न था।

गौरी, जमना मस्तके चंद्र शोभी रह्यो छे ते महादेवजी थी सम्मानित थयेला, हे गौरी देवी अपने में प्रणाम करगी। साथी गौरी नु भवानी तरीके शंकराचार्य जी देवी अपराध क्षमापन मां स्तोत्र मां सुंदर स्तवन करियो छे। भवानी पिता भस्मालेपो गरलमशनम।

मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक।

0: पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
1: कोई बोल राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

Oh, my God.

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।